0: एक साहब ने वचन बड़ा प्यारा किया, समा दौड़ गया मेरा, कहो नानक ताके बल जाओ। बोलो कहो नानक ताके, मैं ओदे तो बलहार जाना। स्पष्ट जिहा शब्द है, कहो नानक ताके बल जाओ, कलयुग में पाया जिन नाओ। कलयुग में पाया जेडे कलयुग विच जपदे ने सतनाम श्री वाहे, कलयुग जपण नहीं दिंदा। इन्हें टुंड मरुंड कर दिता सारी दुनिया का जीवन, कोई फुल खिड़दा ही नहीं, सारी दुनिया नू अग लगी ईरखा दवै दी। मगर साहब कहिंदे मैं बलहार जाना जिहड़ा कलयुग विच वी कहिंदा सतनाम श्री वाहे। ते तुसी भागां वाले हो जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे हर कारज मेरे सतगुरु सवार दिंदे। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते, गरंटी दे शब्द, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, उन्हां दे काज सवारता परमेश्वर जेड़े जपदे ने सतनाम श्री वाहे। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नूं खलारो, जुड़ो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे चरणां विच, सुरत नूं टका के रखियो। मेरा सतगुरु कृपा करे मन बाहर ना जावे, सुरत बाहर ना जावे। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी।
0: वाह।
1: नाती धोती संबही सुती आए नचिंद,
0: आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पहली गल तां गुरमुखो चेते रखियो, घरां विच की बोलना हुण, पंजाबी बोलिया करनी, बच्चियां दे नाल पंजाबी पढ़नी, पंजाबी बच्चियां नूं पढ़ाउणी है। इथे बाबा फरीद जी बड़े प्यारे बचन कर रहे, कहिंदे नाती धोती संभी, नहा लिया धो लिया अपने आप नूं संभाल लिया, मगर सब कुछ करन तों बाद फिर सौं गई। जदों परमेश्वर नूं मिलण दा वेला आया फिर सौं गई। नाती धोती संभी सुती आए नचिंद, एक अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह साहब ने होर कीता है। वह कहिंदे पढ़ लिख गया विद्वान बन गया, मगर सारा कुछ पढ़ लिखते गया, मगर जदों परमेश्वर दी बंदगी दी गल आई उदों बेहोश होके सौ गया। जिथे नितनेम दी गल आई, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर जिथे नितनेम दी गल आई, सिमरन दी गल आई, उस गलों बेहोश होके यह जीव सौ गया। इथे मेरे सतगुरु का यह भी अर्थ बन सकता है, कोई कोई अमृत वेले उठिया होए, नाता होए, धोता होए, परमेश्वर की बंदगी करता होए। महापुरुष बाबा प्रीतम सिंह साहब होए ने, उन्हां दे कोल जिहड़े विद्यार्थी रहिंदे सी, ते जदों अमृत वेले 2 बजे उठा लैंदे सी, आखो सतनाम श्री, 2 बजे इशनान करा के सिमरन बंदगी विच ला लैणा, जदों सिमरन बंदगी करके 5 बजे तक 3 घंटे अभ्यास चो नितनेम चो उठाउणा, ते कईआं मेरे वर्गियां आलसियां ने समझणा फिर, ते उन्हें आवाजां मारदे फिरना मत्थे ते हथ फेर फेर के, ओ भलिओ जे नितनेम करके सौ जाइए ते इतना वा बड़ी सुंदर पैली बना ली होवे, ओदे विच बीज पा दिता होवे, ओदे उते सुहागा मार दिता होवे, मगर ओदे उते बरसात हो जाए ते की जम जांदी उते, और रुकड़ी जी जम जांदी है ना, फिर ओ फेर नहीं पैंदी है दंदा जिहा वाली, ते फिर बीज विचों निकलदा वा। कहण लगे इतना ओ बंदगी कीती उगदी नहीं गी, जदों आपां एक वार सवेरे उठ कलोईए सिमरन कर लईए ते फिर सौ जाइए घराड़े मारन लग पईए। इथे भी बाबा जी इस तरह के बचन करते ने, कहिंदे सब कुछ जान लिया ज्ञानवान हो गया, मगर परमेश्वर दे वेले आण के सुती होए नचिंद, बोलो सुती होए, उस वेले जदों सिमरन बंदगी दा वेला आया, विद्वता तां प्राप्त कर ली, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर सिमरन दे वेले नचिंद होके सौंगी, फिर की रह गया जी।
1: फरीदा रही सो बेली हिंग दी, गई कथूरी गंध।
0: कथूरी दा मतलब हुंदा कस्तूरी, की मतलब हुंदा जी?
1: कस्तूरी
0: कहिंदे ने जिहड़ी कस्तूरी दी सुगंध छुट्टी सी ना अंदरों अमृत वेले सिमरन बंदगी करके, ओ फिर उड गई सौण दा सदका। ते हिंग दी, जदों हिंग दी बो आउंदी आ जिहा इलाके जिहदे च हिंग हुंदी होवे, जां जिहने मुंह दे विच हिंग पाई होवे, ते कदी किसे ने आख्या हिंग दी खुशबू आ रही, की कहिंदे ने? हिंग दी बोआरी। कहिंदे फिर जिहड़ा सिमरन बंदगी वाला सुभा सी, जिहड़ी नाम बाणी वाली बिरती सी ना, ओह ते सौण करके निचिंद होके बेहोश होके सौण करके विचों कस्तूरी वाली खुशबू ते उड गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, रही सो बेड़ी हिंग दी, बेड़ी हिंग दी बदबू ही रह गई मुंह दे विचों, केवल विद्वता रह गई, केवल ते केवल एदियां सियाणपां ही रह गईआं, मगर कस्तूरी वाली जिहड़ी खुशबू सी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उड़द्या पैंद्या सौंद्या ए मुंह जरा वाहगुरु निकलना सी, जेड़ी परमेश्वर का मिठा सुभा सी, ओदे मुंह माथे त्रिकुटी दिष्ट करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूड, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਤੀ

0: अमृत वेले उठो, इशनान करो, बंदगी करो, ते फिर सूरज दी टिक्की चंड तक जागदे रहो, वाहगुरु वाहगुरु दा जाप करो। जदो मुंह तो रसना तो बंद हो जाए, फिर मेरे गुरु नानक दे चरणा च जुड़ के गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु। फिर घंटा इस अभ्यास विच लग जो, एक ते दिन बार बार आने ने, एक घड़िया कितने बार बार आनिया ने, एक दिन जेड़ा अज लंघ गया कल दोबारा नहीं जे आना। एक गल नोट कर लियो आपा पिंडा च रहने वाले हां, जेड़ा पानी एक बार पुल दे थलों दी लंघ जाए दरा आउंदा जी, कहिंदे ने जेड़ा पानी एक बार पुलां दे थलों दी लंघ गया वह दोबारा नहीं, जेड़ा सवास भी मुंह चो प्यारे निकल गया वह दोबारा फिर नहीं मिलना। इस करके जिन्ना अभ्यास जिन्नी बंदगी हो सकती है अपने शरीर के कोलों करनी करो। हां जी,
1: जो बन जांदे ना डरा, जे शह प्रीत ना जाए।
0: ये भी बड़ा प्यारा बाबा फरीद जी का बचन है, एकाग्रता विच आण के आपो अपने बच्चियां दे एक बार भले ली आखो सतनाम श्री वाहे। जे तुहाडी इत्थे औलाद बच गई ते सब कुछ बच गया, उहदे भले ली आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पंथ दे भले ली एक बार आख दिओ सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा फरीद जी कहिंदे मैनू डर इस गल का नहीं कि मेरी जवानी चले चली, ध्यान दिओ जवानी चले चली, सानू तो इस गल का ही डर रहिंदा है। जे जरा दंद कमजोर हो गए तो दंदां दे डाक्टर वाल भज गए, जे अखां कमजोर हो गई तो चश्मे वाले भज गए, जे जरा कहीं वाल आने शुरू हो गए तो डब्बी खरीद लैंदी, डब्बी समझदे हो ना, डब्बी डब्बी कालख दी डब्बी मुंह दे उत्ते फेर दित्ती कि मैं कितने बुढ़ा ना हो जा। मगर बाबा फरीद कहिंदा मैनू बुढ़े होने का कोई डर नहीं, आखो सतनाम श्री, मैनू बुढ़े होने का कोई डर नहीं, मगर एक गल

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लागी हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी हो दे तो बिना उदास हो गई शेर देर नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे पेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालिक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जिते चौर हो सकता है होर किसी चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलों मारी फोटो भवां के उहदी चुक के फोटो सुट के मैं ख्या सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जेड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लेना ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जेड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

संचिए मैंने कट्ठा करिए रात कारण धन संचिए ते अगे कहिंदे भलके चलन होए भलके रात नूं ऐ जोड़ जाड़ के कट्ठे करके सराहने थले रख कहिंदा आ इन्ने कट्ठे कर ले हुण लखपति बन गया करोड़पति बन गया मगर सवेरे सदा आ गया भलके चलन होए ते अगे क्या नानक नाल ना चले वो जिहड़ा पैसा जोड़िया नानक ते फिर पछतावा होए फिर पछतावा होए फिर पछतावे तो बिना पल्ले कख नहीं रह जांदा कहिंदे एक बीज दे रह गए एक बीज के चले गए मगर सारे उजाड़ा ही करके चले गए कोई असली चीज ना बीज के खड़ी जेड़े नाम दी खेती ता मेरे साहब कहिंदे ने बीजो

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चियां वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करानी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड़ दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे कहिंदा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो।

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलाव हो ज्यों बलाव हो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलाव हो ज्यों बलाव हो।

जाने नानक दास सदा कुर्बानी अन झंझ गात अन रंज बात अन झंझ गात अन रंज बात। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बड़े प्यारे वचन ने, समझण दी कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एह हर रस पावे जन कोई, कोई किते करोड़ां दे विच्चों, नहीं तो छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया, ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी है, गुरु वाले बनी है। नहीं तो निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत तो वांझिया कर देना है। एहो हर रस, बोलो एहो अमृत की आ, हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोए दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों, जेदे ते मेहरबान बापू होवे, ते जिन्हां नूं इह हरी दा रस मिल गया, अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा, ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमार। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत, जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने इह पक्की गल आ, जिस जीव दे मूंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो, हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवा गमन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा, जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ, गुरु दी पनाह विच आउंदी आ, गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों, ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है, उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गमन मिटे, बोलो आवा गमन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो, गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवाने अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो, दास नूं भी सेवक दिओ, सेवा दिओ। आवा गमन मिटे, बोलो आवा। कदों प्रभ सेव, जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया, जदों आप त्याग शरण गुरदेव, आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के, ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गुण मिट गया। इउ रतन जन्म का होए उधार, ए रतन जन्म दा उधार हो गया, एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए, उन्हें मुड़के मुड़ना नहीं, उन्होंने मुड़के किते नहीं आना। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना, उस दिन तो ए अमर हो गई जिस दिन तो इनू अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म की बंदगी करने वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने अमृत नहीं मिलिया, मैं सतगुरु की हजूरी विच मेरे गुरु की फिलोसफी मुताबिक कह रहा वा कि उन्हों का आवागमन नहीं मिटदा, जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आना पैंदा है, फिर आना पैंदा है, फिर आना पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां, सिमरन बड़ा करदे हां, जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी, नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं, जिदन मिट गई उदन बन गई, जिदन मिट गई उदन ही बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं, जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणां दे विच, उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे, आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसीं मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसीं हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणां उत्ते डिगे ने, ध्यान देना है, जित्ती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जित्या, बाबे ने दो देश नहीं जित्ते। ए ते साडी बदकिस्मती आ कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए, जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए, जे मक्के मदीने गए उथे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के, बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना। तुसी कहिंदे हो नवा दिता, टेलीविजन दे उते रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता, मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਨਾ

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पए, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पए। आखिर राज की ध्यान दे, आखिर राज की शक्ति की। धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया ओ चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ए जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलदा जिना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन दी अजे परिपक्वता नहीं होई। गुरमुख प्यारे हो, ए ते रोगी होए नू, एनू कोड़े होए नू, एनू विगड़े होए नू, मन बे

जो गाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख प्रधान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा

चंद्रमा आ जान, हजारा सूर्य चढ़ जान, पर गुरु तो बिना हनेरा है। जैसो चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार, पर प्यारे एते चानन खुंदिया गुरबिन घोर अंधार। इना चानन खोन दे बावजूद भी गुरु तो बिना हनेरा है। सतगुरु ने देखो साडे अज दे सवालां दा उत्तर भी बाणी भी दिता है, क्योंकि असीं कई वारी सोचने आ मनुख अकल दे बुद्धि दे तल ते बहुत अगे निकल गए, दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई, ते ओ सफर जिहड़ा असीं कई महीने कई सालां विच करदे सां अज इन्नी कु बंदे दी अकल ने काम कीता कि कई सालां दा सफर कुछ कु महीनियां विच तय हो सकदा है। सच जाणो महीने भी नहीं, कुछ कु दिनां विच, दिन भी की कुछ कु घंटियां विच कई सालां दा सफर तय कर सकदा है। ते दातार जी कहिंदे ने अगे मनुख दी रसाई सी केवल धरती तक, कि धरती दे एक खिते तो चलिया ते दूसरे खिते ते पहुंच चकदा सी। पर याद रखी मना कि बाहर ते तू दुनिया बिल्कुल छोटी कर दिती, जेड़ा सफर सालां दा सी ओह घंटियां विच तय कर लिया, जेड़ी गल अगे तू कई महीनियां विच दूजे कर पहुंचांदा सै एक खिंद विच पहुंचा दिती। पर याद रखी बाहर दे सफर अकल नाल छोटे हो सकदे ने, पर अंदर दा सफर अपनी अकल नाल नहीं, अंदर दी मंजिल केवल गुरु दी कृपा नाल मिलदी हुंदी है। साहिब कृपालू जी ने प्रमाण दिता है बाणी विच, कहिंदे ने मनुख इन्नी कु तरक्की कर जाएगा कि अख चमकण दा समा किन्ना कु हुंदा है, अजे तां केवल ये चंद्रमा ते मंगल दे ग्रह तक अपनी रसाई पिया बनांदा है। साहिब कहिंदे ने अख चमकण दे समय विच बंदा सैकड़े आसमान उपर जा सकेगा, अख चमकण दे समय विच सैकड़े आकाश देख के आ जाएगा, पर कहिंदे ने बाहर दा सफर अख चमकण विच तू सैकड़े आसमाना दा तय कर लेंगा, पर अंदर दा शब्द गुरु तो बिना नहीं, अंदर दा सफर करनगे ओ जिन्हां उत्ते गुरु की नजर होवेगी। साहिब ने शब्द वरते ने कहन लगे परमाणु पर जंत आकाश है, दीप लो शै खंडन है, कि जे तू छोटा जिहा अणु भी बन जाए परमाणु बन जाए ते अख चमकण विच कई दीप कई आकाश घूम के आ जाए, पर प्यारिया बाहर दे सफर अकल नाल हो जांदे ने, अंदर दी मंजिल गुरु तो बिना नहीं मिलदी। परमाणु पर जंत आकाश है, दीप लो शै खंडन है, गाछेन नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्धते, गुरु तो बिना साधु तो बिना अंदर दा मुकाम कदी नहीं मिलदा हुंदा। बाहर अकल नाल चानन मिल सकदे ने, पर अंदर दा सुख गुरु तो बिना नहीं। सतगुरु ने एक बचन होर कीता, धन गुरु अंगद साहिब दी शब्द हुंदा है, हजूर ने मेहर कीती है, कहिंदे ने कि बंदिया कदी सोच यह शरीर ता तेरा एक घर दी तरह है, कहिंदे ने मन इहदे उत्ते छत पिया है, तन इहदे ते छत है, मन इह कोठा है, कहिंदे ने अंदर एक खजाना पिया तेरे नाम दा, पर जे तू सोचे मैं अपनी अकल नाल अपनी बुद्धि अपने ज्ञान नाल उत्थे पहुंच जावां, कहिंदे ने उस खजाने तक तू नहीं पहुंच सकदा। शायद पिछली वारी अर्ज कीती होवे डॉक्टर भाई शेर सिंह कश्मीर वाले, उन्होंने बड़ी सोहनी एक उदाहरण दिती सी, जिहड़े सज्जन कई वारी कहिंदे ने कि लो जी शब्द तो बिना बाणी तो बिना नाम तो बिना असी अपने अंदर नूं खोज नहीं सकते, वह बड़ी सोहनी गल कहिंदे सन। वह कहिंदे ने कि सूरज दियां किरणां विच भी चानण है, पर मत समझो कि जो कुछ है सूरज दियां किरणां ही, इस सूरज दे चानण तो अगे भी कोई चानण है। तो उदाहरण वह कही दिती सी, कहिंदे ने बच्चे की खत की तली ते उन्होंने शब्द वरत्या सी कि कुछ पैसे रखे होण, एक टका ही रखिया होवे, आपां शब्द वरत लईए एक सेंट ही रखिया होवे, कहिंदे ने बच्चा उस सेंट नूं चुके अपने मूंह विच पा जाए, उस टके नूं जां उस पैसे नूं बच्चा खा जाए, ते जदों अपने पेट विच उहनूं निकल जाएगा, कहिंदे ने जिन्नी देर तक वह टका हथ की तली ते है जे दीवे ते चानण विच देखो ते तां वी उह दिस पएगा, जे सूरज की रोशनी विच तको ते तां वी उह दिस पएगा, पर जदों वह बच्चे दे पेट भी चला गया तो जिन्ना मर्जी पेट को दीवा बाली जाओ पता नहीं लगना वह पैसा है कितने। मैं बेनती कर लगा क्यों अमृत की लोड़ है, गुरु के चरणों में क्यों जुड़ना, केवल बाजमुखी बिरती तक सीमित नहीं, वह टका दीवे के चानने बाहरों दिस सकता है जे खत की तली देवे।
सूरज की रोशनी

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जोगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच

शपर तुट में हो हरिता जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़ है वसी रब हयाली है जंगल क्या टूंडे हैं हरिदा इन्नी निकी जंगी है थाल डूंगर पव्यों आज फरीद कुजड़ा सैकों हाथियों हरिदा इन्नी निकी जंगी है

पवंदई खड़ा न आप मुहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निगी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप कल दे रोज तो लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। ये सलोक कल दे रोज शुरू कीता सी, जित दिहाड़े तनवरी साहे लै लिखाए। मलक जे कन्नी सुनीदा मुंह दिखाले आए, जिंद निमाणी कढ़ी है हड्डा को कड़काए। इथों तक आप कल दे रोज सरवण कर चुके। इस तो अगे साहे लिखे ना चलनी, चलनी का मतलब हुंदा है टलना। जो साह लिखिया गया दिन मुकर्र हो गया कि ऐस दिन तेनू चलना पैना है, इस वक्त दे उते रुखसत होना पैना है। ओ गिनिया मिथिया साह, बाबा फरीद साहब जी कहन लगे चलन वाला नहीं है, टलन वाला नहीं है। ना ते उस साहे नू टलन वास्ते किसी अप्रोच ने कम देना है, ना उस घड़ी नू मौत वाले पल नू टलन वास्ते धन दी

0: होया ए के चिड़िया कां कबूतर डरदे रहे, उस पुतले नू वेख के भय खांदे रहे, ते दाना चुगन वास्ते ना आए। हुण कां बड़ा चलाक है, बड़ा चलाक परिंदा है कां, और बड़ा सियाना है। आखर हवा दा एक बुला आया, तेज हवा दा झोंका आया, उस हवा दे नाल पुतला जमीन दे उत्ते डिग पिया। ओदे जेड़े पाए हुए कपड़े सनो भी उड गए, ओदे जेड़े बने हुए बनावटी अंग सनो भी बिखर गए, ते ओ जेड़ा कां सी ना मैले वाली चुंझ उस पुतले दे उत्ते बह के सवारनी शुरू कर देंदा है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने बचन फरमाया, कहन लगे ओ बंदे जिन्ना दे कोल केवल लिबास है, पहरावा है, अंदर धर्म दी जोत नहीं जग रही, कहन लगे उस पुतले तो वध कुछ भी नहीं है। जिवें ओ पुतला बेजान है, है ता पुतला पर बेजान है, ओदे अंदर जान नहीं, सवास नहीं चल रहे, उन्हां नाड़ां दे अंदर खून गर्दश नहीं कर रहा, ओदे अंदर दिल दी धड़कन जारी नहीं है, ओ मुर्दा निर्जीव पुतला है। कहन लगे जिस मनुख ने बाहरों केवल लिबास पाया है, पहरावा सजाया है, पर ओदे अंदर धर्म दी जोत नहीं जगदी, बाणी दा असर नहीं, बाणी दा सिद्धांत नहीं, बाणी ओदे अंदर चल नहीं रही, परमात्मा दी याद ओदे अंदर लगातार चलदी नहीं, कहन लगे उस पुतले नालों वत नहीं है, पुतले वर्गा ही है। ते हजूर ने लानिया कह दिता, अनिक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे जिवें डरावना खेत दे अंदर है, इवें ही बंदा है जिन्हें बारों बारों लिबास बनाया है पर उदे अंदर नहीं है। मैं फिर एक बेनती करा, गुरबाणी दे वचना नू उलंघ के, अर्था नू मरोड़ त्रोड़ के करा, ए मेरी ईमानदारी भी नहीं होएगी, ते मैं संगत दा भी चोर, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा भी चोर होवांगा। क्योंकि जे भगत फरीद साहब जी कह रहे ने कि दर दर वेशी गाखड़ी, ते फिर मैनूं इह अर्थ ते तुहाडे सामने रखने ही पैणगे। आप बर्दाश्त करो ना करो, अर्थ ते मैनूं करने ही पैणगे ना इस पंक्ति दे अर्थ। हुण एक बचन मैं गुरबाणी दे अंदरों होर तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरबाणी ए कहिंदी ए कि दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वाशी रास, दिल दर वेशी रास, इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वेशी रास, कहन लगे जो अपने अंदर दी रखवाली करदा है। मैं फिर बेनती करा, अंदर दी रखवाली, मन दी रखवाली, मन मेरा काम वाल ना जाए, मन मेरा निंदा वाल ना जाए, मन मेरा झूठ वाल ना जाए, मन मेरा बुराइयां वाल ना जाए, मन मेरा लोभ दे अंदर मस्त ना रहे, मन विच कोई बुराई ना रहे। गुरबाणी दा वचन है, दिल दरवानी जो करे, दरवानी दा मतलब राखी करना, जो अपने अंदर दी राखी करदा है, दिल दरवेशी रास, ते फिर मन करके राह दे उत्ते चल रहा है, ते चल केड़े राह दे उत्ते रहा है, जेड़ा राह निरंकार दे घर नूं जांदा है, उह राह मिलदा कित्थों है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचना विचों। जो अपने अंदर दी राखी कर रहा है और जो रब जी दे राह दे उत्ते सही ढंग दे नाल चल रहा है, गुरबाणी ए कहिंदी है उहदा इश्क मुबारक है, उदा लेखा करते दे पास है, मतलब करता उनू अंदरों जानदा है, ते करता पुरख वाहिगुरु दी ओ रहमत दा पात्र भी बन जाएगा, ओ करता पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश दा पात्र अवश्य बनेगा। एक बचन मैं भगत फरीद साहब जी दे तुहाडे सामने होर रखना चाहवांगा। ओ कहिंदे ने, फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे प्रांद। भगत फरीद साहब जी दा बचन, कहन लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी, चाकरी मैंने सेवादारी कर, चाकरी मैंने नौकरी कर, चाकरी मैंने गुलामी कर, कहे कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। भगत जी कहन लगे साहिब दी कर चाकरी, अपने साहिब दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा चाकर बन, ते चाकर बनन दा मतलब है गुलाम बन, गुलाम दा मतलब है जो हुक्म गुरु कहन उस हुक्म नू मनना है, कोई उक्ती कोई युक्ति कोई अपील कोई दलील कोई किंतु कोई विंतु लेकिन वेकिन करन दी लोड़ ना होए, गुरु ने कह दिता है कम करना है ते करना है, उदे अगे अपील दलील करन वास्ते मन कोई प्रश्न उठाए ना। ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚੱਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮੋਹ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਈਰਸ਼ਾ ਬਖੀਲੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਦ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ ਜਿਹਦਾ ਜੇਰਾ ਜਿਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਪੱਕਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੁਹਾਰ ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਤੀਖਣ ਮੈਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕੀਨੂ ਰੋਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕੀਨੂ ਰੋਸ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਕਾਂਟਾ ਠੋਕਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ ਉਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕੀਨੂ ਰੋਸ ਕਾਜ ਉਹਾਂ ਕੋ ਲੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਲ ਨਾ ਦੀਨੋ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਾਂਗਾ ਤੇ ਡੋਬਾਂਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਭਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਗਤ ਨੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ ਸਰਮਦ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਜਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਕੋ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਬੇਤਾਲ ਜੋ ਸਾਜ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ हारमोनियम ताल विच ना होवे बजाउण वाले दा सुन वाले दा रस नहीं। गुरु के कीर्तनीय निक्की जी हथौड़ी दे नाल जोड़ी नूं ताल विच करदे ने तुहाडे सामने, जोड़ी दे पुड़े नूं कदी चढ़ा देंदे ने कदी ला देंदे ने, सुर ताल विच करदे ने। जोड़ी ताल विच ना होवे बजाउण ते सुनन वाले दा आनंद नहीं। सरंगी रबाब सरंदा कोई भी साज अगर ताल विच है सुर विच है ते उहदे विचों राग दा जन्म हुंदा है, गाउण वाले वजाउण वाले सुनन वाले दा आनंद बनदा है। ते जे ओ साज सुर ताल विच ही नहीं ते ना वजाउण वाले दा आनंद ते ना श्रोते दा आनंद सुनन वाले दा आनंद। आए सन बेताले जगत नूं ताल करन वास्ते, बेसुरे जगत नूं सुर विच करन लई, ते लोकां ने कहा बेताला। कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा पया दवाना शाह का नानक बौराना। पातशाह दी बाणी दे अंदर आ बचन आउंदे ने। कोई मस्ताना कहिंदा है, कोई दवाना कहिंदा है, कोई बेताला कहिंदा है, कोई पूतना कहिंदा है, कोई दस्तगीर वर्गे इट्टां वट्टे मारन लई आ जांदे ने। पर दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जी रांद। गुरु नानक साहिब जी दी मुबारक रसना तों किसी दे विरोध दे अंदर एक कौड़ा फिक्का बोल निकलदा किसी ने नहीं सुनिया। इट्टां वट्टे मारन वाले हो तुहाडी कुल नास हो जाए, ये बचन पातशाह ने नहीं कहे। जेडे मेनू मंदा बोल रहे हो लोग तुहानू मंदा बोलन, ये बोल नहीं कहे। जिन्हां ने मंदा बोलिया पातशाह उल्टा उन्हां दा भला कर दे रहे। ते मैं ते इतिहास दे पन्ने पढ़ के एक बारी हैरान होया, भाई साहब भाई मरदाना जी कर देंदे ने प्रश्न। वो कह देंदे ने बाबा असी इन्हां लोकां दा भला कर रहे हां, अपना घर छड्या परिवार छड्या तियां पुत्तर छड्डे बच्चे छड्डे। गुरु नानक साहब भी गृहस्थी ते भाई मरदाना साहब भी गृहस्थी, उन्हां दे भी दो साहिबजादे ने भाई रजादा जी ते भाई सजादा जी। गुरु नानक साहब जी दे दो साहिबजादे ने बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी। आखिया आपां घर बार छड्डिया मां बाप छड्डे तियां पुत्तर छड्डे आए आ इन्हां दा भला करन लई, ये उल्टा सानू मंदा बोलदे ने, उल्टा सानू गाली गलोच करदे ने। मुस्कुराउंदिया होया कहन लगे मरदानिया जदों कोई पागल बंदे दा वैद जां डॉक्टर इलाज करदा है ना ते ओ पागल डॉक्टर नूं वैद नूं मंदा ही बोलदा है, क्योंकि होया जो पागल समझदार ते होया ना। अगर समझदार दा इलाज होवे समझदार ते करेगा धन्नवाद, जेड़ा बंदा है सूझ सियाणप रखण वाला ओ ते कहेगा तुहाडा शुकराना है तुसीं इह चंगा उपदेश मेरी झोली विच पाया। पर जेड़ा अति मूड अति पागल है ओ मारन वास्ते आएगा इन्हें सच दी गल कीती क्यों है, ओ हथियार चुक के आ जाएगा इहदा गला बंद करो इहदा बोलना बंद करो। गुरु नानक साहिब जी नाल इस तरह हुंदा रहा। गुरु नानक साहब कहन लगे मरदानिया जदों कोई वैद पागल दा इलाज करन लई जांदा है ते ओ मंदा ही बोलदा है, उस वैद ते कदी कदी ओ हथी वी पै जांदा है। ते वैद अपना गुण ना छड्डे ओ तां ही चंगा वैद है, ओ तां ही सुगड ते सुजान वैद है। ते जे उस पागल दा इलाज करदा करदा अपने गुण नूं ही गवा पवे ते फिर ओ वैद कादा हो जा। लोग कहणगे ओ ते है पागल पर तूं ते वैद है ना, तेरे कोल ते गुण है। तो खैर भगत फरीद साहब जी कहन लगे दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जी रांद। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चला। दरवेश लिबास पा के बनना बड़ा सौखा है, बाहरों बनना इनू मैं दूजे लफजां दे राही बयान करा। लिबास पा के दरवेश अखवाउणा लोकां दे कोलों बड़ा आसान है ते अंदरों मन करके दरवेश बन जाना ओना ही कठिन है, ओना ही महान है। जिन्ना जल्दी तन धर्म की दुनिया में चला जाता है ना उन्नी जल्दी मन धर्म की दुनिया में नहीं जाता। ते जिहदा मन धर्मी बने ही ना, मन धर्म नूं कबूल करे ही ना, मन धर्म के नेम नुकते अपनावे ही ना, वो बाहरों किस तरह का पहरावा बनाई रखे कुछ अखवाई जाए वो कादा दरवेश होया। हां लोग तेनू लख सलामा करन पर खुदावंद करीम दे घर दे अंदर परवान नहीं पएगा, क्यों? क्योंकि गुरु तेरे अंदर दा सुधार मंगदे ने, गुरु तेरे मन दा सुधार मंगदे ने, ते मन दा सुधार करन लई गुरबाणी दा उपदेश है। अगां भगत जी कहन लगे फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत, मैं वेख्या लोग चल रहे ने आम दुनियादारा वांग किवें चल रहे ने दुनियादारा वांग इते बेनती मैं कर ही चुका ना कि बाहरों दरवेश ने चलना ही दुनिया वांग है। बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो गृहस्थी होवे, बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो तिया पुत्रां दा पिता होवे, बाहरों दरवेश होवे जिहदे घर दे अंदर पत्नी होवे। बाहरों दरवेश ओ है जो अपने महल माड़िया दे अंदर रसदा वसदा होवे, पर ओ दरवेश केवल बार बार दा अंदरों दरवेश ओ है जो सच दे नाल जुड़िया होवे, बुराइयां तो बचिया होवे, गुणा दी माला परो के अपने मन दे अंदर वसाई होवे, अंदरों दरवेश हो। चलना दुनिया पत, बाहरों ते चलना है दुनिया दारा वांग, अंदरों वखरे होके चलना है, अंदरों दुनिया दारा वांग नहीं चलना। अंदर दुनिया चुगली निंदा ईर्षा दी भरी है, पर दरवेश दे अंदर ना चुगली ना निंदा ना ईर्षा होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर खोट है, पर दरवेश दे अंदर कोई खोट ना होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर अगर मन करके वेखिए ना आम दुनिया नू, ते दुनिया दे अंदर कोई अपना है कोई बेगाना है, जेडे अपने ने उन्हां नू प्यार, जेडे बेगाने ने उन्हां तो नफरत। पर जेड़ा दरवेश है ओदी दुनिया दे अंदर सारे अपने ने, ओदे वास्ते कोई बेगाना नहीं है, ओदे वास्ते सारे ही अपने ने। ओदे मन दे अंदर सारे वास्ते जगह होवे, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई बौद्धी नहीं, कोई पारसी नहीं। ते जड़ा बड़ी सोच नू सीमित करके चल रहा है, बड़े छोटे दायरे वे चल रहा है, खिमा चाहवांगा ओ सच्चा दरवेश जिस तरह का गुरु नानक साहब जी ने बनाया है उस तरह का दरवेश नहीं होएगा। जे गुरु नानक साहब जी का उपदेश है सारिया लई सांझा, खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को सांझा, ते रब दे सच्चे दरवेश का उपदेश भी चौं वरना लई सांझा है। ओदे निगाह दे अंदर कोई बेगाना कोई अपना नहीं, कोई इलाके दी नफरत नहीं, कोई अपनी जथे बंदी दी नफरत नहीं, फिर ओदे लई भी सारे बराबर ने। भगत जी कहन लगे बन उठाई पोटली किथे वंजा काता। ए जड़ी बुराइयां दी पोटली आम लोग सिर दे उत्ते रख के चल रहे ने, इनू छड के दरवेश बनिया जा सकदा है। ए जड़ी बुराइयां दी गंढ बुराइयां दी पंड लेके असी सिर दे उत्ते चल रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब जी नू पढ़ो गुरबाणी विचों, ते गुरु नानक साहब जी ने किधरे भी एक बाणी दे अखर दे अंदर ए संदेश नहीं फरमाया कि तू संगत करिया कर तेरी चमड़ी दा रंग बदल के ना चिट्टा हो जाएगा, तू संगत करिया कर बाणी पढ़िया कर नितनेम करिया कर या गुरमत दे असूलां नू मन्निया कर ते तेरे नक्शो निगार जेड़े करूप ने ओ सरूप बन जाणगे, तेरा कद बढ़ के लम्मा हो जाएगा, तू सुनखा बन जाएगा। किधरे गुरबाणी दे अंदर इस तरह दा वचन आया, जदों भी आया है उदों मन दे संबंध विच वचन आया है, संगत करेगा मन बदलेगा, बाणी नू पढ़े विचारेगा मन बदलेगा, बाणी दे आसरे चलेगा मन नू रस मिलेगा। गल ही गुरबाणी दे अंदर प्यारे मन दी चलदी है, ते दरवेश ओ है जो अंदरों बाणी दे नाल जुड़िया है अंदरों। फिर अखीर ते मैं एक बेनती होर भी करदा चला, साढ़े कोल कोई इस तरह की ऐनक ते है नहीं पे जो अखां दे उत्ते लाईए ते जेड़ा साढ़े सामने खड़ा है वो नजरां तक लैन के सच्चा है जां झूठा है। साड़ी अपनी इतनी तौफीक नहीं, अखां दे अंदर इन्नी बरीक बीनी नहीं, पर जे अपनी समझ नहीं ते समझ देन वाले गुरु नूं पुछना ते कोई मेड़ा नहीं ना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी चार अखर बाणी दे उस कसवटी नू उस बंदे दे उते ला के परख लिया करो कि ए सच्चा है जां झूठा है, दा जवाब तुहानू अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जे गुरबाणी दे अनुसार गुरबाणी दी कसवटी दे नाल ला के परखोगे, क्यों परखन दी लोड़ है, क्योंकि सुनियारा सोने नू हाथ दे अंदर पकड़दिया ही वो अंदाजा ते ला लैंदा है कि सोना असली है जां सोना नकली है। पर अपनी ओदे कोल एक हुंदी है परख, एक हुंदा है पत्थर दा निक्का जिहा वट्टा जिहनूं कसवट्टी कह दिंदे ने, ओ आम पत्थरां वर्गा पत्थर नहीं, थोड़ा खास पत्थर हुंदा है, हुंदा पत्थर ही है। सोने नूं ओदे उत्ते कसाउंदे ने, ओदे रंग नूं वेख के उहनां नूं समझ पै जांदी है असली सोना है जां नकली सोना है। प्यारिओ जे खुद ना समझ पवे असल ते नकल दी पहचान करन वास्ते, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे उत्ते उहनूं ला के वेख लिया करो। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਲਾਬਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਛੱਪੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।
1: ਹਸਤ ਅਲੰਬਨ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੋ ਉਦਰ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਮਤ ਥੋਰੀਆ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਓ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਿਜਨਾ ਬੂਜੈ ਕਿਜਨਾ ਸੂਜੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਜੀ ਭਾ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਬੀ ਦਜਾ ਆ

दीनानाथ मया करू शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवे जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखु हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखु हो लाज मुरार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

नाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरन करुणा मैं सब दुख हरू हे शरण जोग दयाल दीना नाथ मया करू शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

फरीदा जो तैं मारन मुकियां तिना न मारे कुम्मा अपन डै कर जाइए पैर तिना दे चुम्मा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों रोज रोज सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, भगत फरीद साहब जी दे इन्हां श्लोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां मैं आप संगत दे सन्मुख रखण दा नमाणा यतन करा। भगत जी दा पहला श्लोक जो अज पढ़ के सुनाए गए, फरीदा जे तू अकल लतीफ, लतीफ कहिंदे ने अकल वाला, लतीफ कहिंदे ने अकल याफ्ता, ज्ञान वाला, सूझवान बंदा। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, कह लगे जे तू ए कबूल कर रहा है कि मैं समझदार हां, ते फिर अपने वास्ते काले लेख क्यों लिख रहे हैं? अपने वास्ते कालख इकट्ठी क्यों कर रहे हैं? किसी दूसरे नूं बचाउणा ते नंबर दो दी गल, उस तो अगे दी घटना, अपने आप नूं ते बचा। गुरु अर्जन देव साहब सुखमणी साहब दे अंदर इस तरह ही हुक्म करदे ने, जे जानत हौ आपो बचे, जे तू जानदा है कि मैं सूझवान आ, ते फिर अपना आपा विकारां कोलों बचा के विखा, अपने पल्ले नूं संकोच के रख, इनू चिकड़ दे अंदर भरण ना दे, जे तू जानना है कि मैं सियाना। हर मनुख अपनी अकल दे उत्ते बहुत वड्डा कॉन्फिडेंस रखदा है। हर चीज दूसरे दी प्यारी लग जांदी है, कारोबार दूसरे दा चंगा, जेब दूजे दी धन विच घट भी होवे।

बहुत कुछ कमा कमा के भंडार जमा भी कर चुका है, तन दौलत पदार्थ दे अंबार लगे पै रहे, पर शरीर तुहाडा वर्तन दी समर्था विच नहीं है। उन्हां पदार्था नूं तन दौलत नूं वर्तना चाहुंदा है, वर्तन दे योग नहीं है, ओ सगों दुख दा कारण बन जांदे ने, सामने पै रोज रोज दुखी करदे ने। इन्हां नूं मैं कमाया सी वर्तांगा, पर हुण शरीर जवाब दे गया, वर्तां किवें? खान दा अजे चा बाकी है, खान दी चाहना तमन्ना बाकी है, पर करिए कि मेदा जवाब दे गया ते ओ विस वर्गे लगदे ने, ओ सगों दुखदाई लगदे ने। एक गरीब दे कोल है नहीं, चलो होर गल है, एक दे कोल भंडार भरे पए ने, पर ओनू खान दा हुक्म नहीं, ओ फिर दुख दा कारण ही बन गया ना, दुख दा ही बायस बन गया ना। कोल पदार्थ होण पर खान दा हुक्म ना होवे, कोल लम्मे चौड़े पदार्था दे अंबार होण, कपड़ा होवे पर चमड़ी दा रोग कोई इस तरह दा होवे, कपड़ा हंडाउंदा हुक्म ना होवे, ते फिर वो कपड़ा भी वेसी बन गया ना। मैल माड़ियां सब कुछ कोल है, पर अंदर वसन दा हुक्म नहीं है, फिर वो वैसी बन गया ना। जिन्ना तियां पुत्रां वास्ते तू जफर जाल के खोई जाल पा के भी घंटे कम करदा रहा, उन्हां नूं तू एक मैल बना के तैयार करके दिता, उन्हां ने तेनू बुढ़ापे दे अंदर धक्के मार के बाहर कढ़िया, वो मैल तेरे लिए वेसी बन गया ना। ओनू वेख वेख के अखां भर आउंदियां ने कि बनाया है, एक एक किट याद आउंदी है, मैं इस तरह बनाया, एक एक रोज चेते आउंदा है, एक एक दिन चेते आउंदा है, मैंने जफर जाले ने एक कुछ बनाउन ले, ते अज उथे रहना मेरे वास्ते हुक्म नहीं, वो फिर वेसी बन गया ना, जहरी बन गया ना। भगत जी कहन लगे, सक्कर होई विस साई बाजो अपने वेदन कही है, किस वेदन मैंने पीड़ा। कहन लगे हुण तेरी वेदन तेरी पीड़ा जे सुन सकदा है ते साईं सुन सकदा है, रब परमात्मा इहदे तों बगैर निरंकार रब जी तों बगैर तेरी पीड़ा तेरी वेदन सुनन वाला भी कोई नहीं, क्योंकि वेदन सुननी सी तियां पुत्रां ने, ते तियां पुत्रां ने ते घरों बाहर कढ़िया, ते वेदन सुने कौन? वेदन सुननी सी भाईआं ने, ते भाई तेरे नाल सहमत नहीं है, भाई धक्के मार के बाहर कढ़ रहे ने, ते वेदन सुने कौन? वेदन सुननी सी पत्नी ने या पति ने, ते पत्नी धक्के मार के पति नूं बाहर कढ़ रही है, पति धक्के मार के पत्नी नूं बाहर कढ़ रहे, वेदन सुने कौन? प्यारियो जद भी किधरे बिरथा तुहाडे मन दे अंदर पीड़ा मन दे अंदर भर जाए, ते लोकां दे सामने अपनी वेदन करन दी बजाए साईं जी दे सामने दुखड़े नूं बयान करो। पातशाह दा इक हुक्म है, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। कहन लगे लोकां दे सामने रोना रोण दी बजाए गुर पै अरदास कर। गुरु सुनना भी जानदा है, ते सच जाने गुरु मटाउणा भी जानदा है, तेरे दुख दलिद्र नूं घटाउणा भी जानदा है। भगत जी कहन लगे हालात तेरी सजना इस तरह दी बन गई है कि तेरे वास्ते मिठे पदार्थ भी जहर दे तुल बन गए। सक्कर होई विस साईं बाजो अपने, दुनिया दे अंदर तेरी पीड़ा तेरी वेदन नूं सुनन वाला तेरा अपना कोई रहा नहीं, ते हुण कौन है तेरा अपना? जिदे कोलों जन्म लैके मृत मंडल दे कोल आया सी, सतनाम श्री वाहिगुरु तेरा अपना है। साईं बाजो अपने वेदन कही है किस? कहन लगे साईं जी तो बगैर रब जी तो बगैर हुण अपनी वेदन बयान भी करें ते करें भी किन्ना। एक मैं होर बेनती करदा चला, कोक हुंदी है शीतल, शीतल मैंने ठंडी, पर ठंडी कोक नूं बाहर रख दिओ ते समा पा के ना वह बदल जांदी है, ठंडी कोक अपना सुभा बदल जाती है, उदी ठंड चली जाती है, सहजे सहजे वह गर्म होनी शुरू हो जाती, जिन्ना समा बाहर रहेगी ठंड तो फ्रिज तो बाहर रहेगी गर्म होएगी। ए दूसरी उदाहरण जो मैं देनी चाहना, खिमा करो, शराब जिन्नी पुरानी हो जाए ना, जिन्नी पुरानी, मैं इतिहासकारां दे बोल पड़े, उन्ना उदा नशा वध जांदा है, उन्ना नशा वध जांदा है, म्यार वध जांदी है। जे मनुखी मन दे अंदर रब्बी रस ना आए, यह शराब वर्गा ही बनिया रहे, जहरीला बनिया रहे, कौड़ा बनिया रहे, ते बुढ़ापे तक पहुंचदिया पहुंचदिया यह होर माया दी पकड़ विच आ जांदा है, शराब वांग इहदा नशा वध जांदा है, विकार वध जांदे ने, गुणा वध जांदे ने, घटन दी बजाय रब वल आउण दी बजाय सगों उल्टे पासे नूं जांदा है। ते मैं
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ।

रंग नवेला हुए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचे सब को एहु पिरम प्याला खसम का जय पावे तैं दे फरीदा जिन लोयन जग मोहया से लोयन मैं डिठ कचल रेख ना सहंदया से पंखी सुवे बहिठ फरीदा कुकेंदियां चांगेंदियां

0: करेगा। कहन लगे अपना लाया पिरमना लगे जे लोचे सब कोए एह पिरम प्याला खसम का जय पावे तै दे। सतगुरु ए प्रेम वाला प्याला तेरी दात है, एह दात उन्नू ही मिलदी है जिदे उते तू मेहरबान हो जाना है, जिदे उते तू त्रुट पैना है। फिर परमात्मा दे प्रेम वाली दात ना ते लुटी जा सकती है, ना खोई जा सकती है, ना चुराई जा सकती है, ते ना इनू साड़िया जा सकता है, ना इनू बर्बाद किया जा सकता है। ये दात मिलदी परमात्मा दी रहमत दे द्वारा है, उदी कृपा दे द्वारा। आखिया जय भावे तां दे, खुदा मैं ते कर्म कर रहा पर मेरे कर्म इकले की करनगे जे तेरी कृपा ही ना होवे, मेरे कर्म की करनगे। आख्या जय पावे तांते। तीसरा श्लोक भगत फरीद साहब जी दा। कहन लगे फरीदा कु केंदियां, फरीदा जिन लोयन जग मोहया, लोयन मैंने अखां। कहन लगे जिन्ना अखां दे नाल जगत नूं वेखदा रहा ते अखां दे वार कर करके जगत नूं ठगदा रहा। कहन लगे जिन लोयन, जिन्ना इन्हां दो अखां ने जगत नूं मोहया सी, से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेख्या। जवानी दे अंदर अखां दी बहार बड़ी सी, बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर अखां दी चमक बड़ी सी, बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर इन्हां नूं दूर दूर तक वेखण दी तौफीक मिली सी, बुढ़ापे दे अंदर इन्हां दा वेखणा वी बंद होया। पानी आप मुहारे चलना शुरू होया, अखां दी सुंदरता अपने आप चली गई। भगत जी कहन लगे से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेख्या है। कज्जल रेख ना सहंदिया से पंखी सूए बहेट, इन्हां अखां दे अंदर सुरमे दी तारी पैंदी सी, बर्दाश्त नहीं सन करदियां। इह वी वेख्या है कि मौत आउण तों बाद इन्हां दे अंदर पंखी आंडे देंदे नजर पै रहे ने। पंखी सूए, सूए दा मतलब आंडे देंदे नजर पै रहे ने, बहिंदे वेखे गए ने नहीं नेत्रां दे खोल दे अंदर। अगर ए दो नेत्र मिले ने तो दो नेत्रां दे नाल कायनात विचों कादर नूं तकन दा यतन करो। इन्हां दो नेत्रां दे नाल, दो नेत्रां दे नाल पराए रूप नूं तक के मन मैला ना करो। दो नेत्रां दे नाल किसे दा चंगा वधदा फुलदा कारोबार वेख के अपने मन दे अंदर ईर्षा नूं ना आउण दिओ। इन्हां दो नेत्रां दे नाल जिथे असीं गुनाह मैल इकट्ठी कर करके अपने मन विच लजाण दा यतन कर रहे हां, इन्हां दो नेत्रां दे नाल पूरी कायनात विचों कादर दे दीदार करन दी वी समर्था मनुख दे पास है। अगर ए चाहे इन्हां दो अखां दे नाल कायनात विचों कादर दे परमात्मा दे दीदार कर सकदा है। भगत फरीद साहब जी दे इन्हां सलोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन आप संगत दे सन्मुख कीता गया।
1: फरीदा कु केंदियां चा केंदियां,

फरीदा थियो पवाही तब जे साई लोड़ें सब एक छिज है बिया लताड़िया है ता साई दे दरवाड़िया है फरीदा खाक ना निंदी है खाकू जेड ना कोई जीवंदियां पैरां तले मुयां उपर होए फरीदा खाक ना निंदी है

मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है के बारों मेरे सिर दे उते बजी हुई पग मैली ना होवे। हकीकत है कि मनुख नू जितनी खबर बार दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बार दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना ये नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहीदी है। इत्थे सब नू पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नू वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहीदा है। ये किसे विरले विरले नू पता है, सब नू नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बार मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बारों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओ वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी है। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनता है तो वो ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे प्रिय पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिदा है, साफ चाहिदा है। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनूं कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। उह मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़ियां दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै उतरसके है। ये बाहर दी मैल है, अगर हथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै पानी दे नाल तो लो उतरसके है, लगी हुई मैल उतर जाएगी, चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे, साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया, अपराध नहीं आया इस जगह दे उत्ते। इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवे गुणा दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असी शुरू कर देने आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वो साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्ष्या है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं वधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। यह जानता है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर ये मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबा दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है, उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो, फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो, फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहनियां कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सर्फ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन। ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात। इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नूं की असर पएगा? ठीक है लोगों के सामने इनी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ये बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जाता, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता का मुल ता ही पैंदा है जे मन सुचा हो। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता का ते बारी सुच का कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आन के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे की वाधू सोच है मैं ओदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड के अंदर लेके चली जाती है ओदी गल कर रहा। हुणे ही आप श्री आसा जी की वार का कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक के अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते केंद्र ने कहो नानक सच त्याइए, सुच होवे ता सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करा, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, इह पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो एदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही परम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याइए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नूं अपने हृदय विच वसा लवें। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनूं गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी का हुक्म अज इस तरह का आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना है, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जाता है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानूं सारियां नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रसना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा परम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही खड़ा है, फिर ते इनो ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नूं बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना। क्यों नहीं पैना? कहन लगे ना ही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल दे उते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने पा हुक्म रोक दिता कि बस संघ एक ही शरीर का चाहिए, बहुतिया शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा जावांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सां। तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है, मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल। मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनू कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनू आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनू आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने उस तो पहला ने। जे तन मैला है ते असी अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असी कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गड़वकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है? चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चलां। दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात, अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे ते मां दीआं अखां वेख लैण कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल। तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदे। पहला मां की काम करदी है, बच्चे नूं चुकदी है, उहनूं इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उहनूं साफ करके ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तों पहला नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे? मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उते दाग, ते मन दे उते दाग का दे लगदे ने मैलियां कर्मां दे, मन दे उते दाग का दे लगदे ने मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए
तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थ है जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए, जगह नहीं मिलेगी। उत्थे आउणा है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरा पन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जांदी, उतना समा खुदा दे अंदर लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इहनूं वार वार चांस मिलदा रहेगा, जन्म मिलदा रहेगा। जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर लै, उन्ना समा परमात्मा दे चरणां विच बैठ

0: बनारस दे ठग मशहूर ने, बनारस दे संत मशहूर नहीं है, ठग मशहूर ने। निकले कोलो तनज परे बोलां दे अंदर गल कह दिती, कहन लगा जिस बंदे नूं भोजन छकन दा नहीं पता कि किथे बह के खाना है, उहदा जीवन किन्ना को सुचा होएगा, उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखिर बोल पै, कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आमे झूठे चाहे भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहन लगे मां झूठी पिता झूठा, उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली ओह भी झूठी, आ रहे ने झूठ दे नाल परे, जा रहे ने झूठ दे नाल परे, आउण जाण दा इह सिलसिला मुक्या ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, ठाओ मैंने जगह, पंडित जी दस दे ते जाओ के सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ, जिथे बह के मैं भोजन खावा, ए दसता ते जा के जगह केड़ी है। मन नू पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नू पवित्र रखो जरूर, पर सारा जोर तन दे उत्ते ना दियो, सारा जोर मन दे उत्ते दियो, मन दी सफाई वल ध्यान दियो, ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नू जन्म देंदे ने, उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। वो कहिंदे ने एक मनुख व्याया गया, उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणा नूं वेख के, सुहप्पन नूं वेख के, नक्शो निगार नूं वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी। नाम सी चंद्रमुखी, ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा, थकदा नहीं सी। चंद्रमुखी दे चेहरे नूं वेख वेख के आनंद पाउंदा सी, ते इह गल कहिंदा सी, चंद्रमुखी मैनूं लगदा है तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले, उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नूं साफ कीता, पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते, उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नूं वेख के, ते महाराज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है। जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों वी नफरत है। दूजे तो नफरत करदे हो, जे कोई तुहानू पुछे भी क्यों, आपां अक्सर कह दिंदे आ इह बड़ा बुरा मनुख है, भी की बुरा है, उहदे हथ पैर बुरे ने, चेहन चक्कर बुरे ने, की बुरा है। आपां कह दिंदे आ नहीं, उहदा सुभाअ चंगा नहीं है, सुभाअ बड़ा बुरा है, इहदी सोच बुरी, इहदा वेखणा बुरा, इहदा चलना बुरा, इहदा खाणा बुरा, इहदा मानसिक मंडल बुरा। दूसरे दी बुराई तों नफरत है, ते जे उही बुराई अपने विच दिस पै तो की अपने नाल प्यार करोगे। पर शर्त यह है कि जे दिस जाए, पर दिस दी दूसरे दी बुराई है, अपनी बुराई बंदे नूं दिसदी नहीं है। अपने वेखदा है जदों भी गुण वेखदा है, दूसरे दी जदों भी वेखदा है बुराई वेखदा है, औगण वेखदा है। तो पति कहन लगा चंद्रमुखी पहला चेहरे दी मैल साफ कर, तेरा चेहरा वेखण दे योग नहीं है। पति देव रोज कहिंदे सी मेरे नालों सुंदर कोई दूजा नहीं, अज की होया। पति कहन लगा चेहरे नूं जाके साफ कर, तेरे चेहरे दे उत्ते नक विचों निकली हुई मैल जम गई है। तो निहाल सिंह जी लिखदे ने, हे मल मूत कसूत सबै पुन और सलेखन बांजन भारी, नाक की मैल जबै निकसै कर नाहे संभार सो पोच उतारी। कर दे नाल मैल, कर मैंने हाथ, कर दे नाल मैल साफ कीती है, पर किधरे चेहरे दे उत्ते लगी रह गई है। आख्या कर नाहे संभार सो पोच उतारी, तो मुख चंद्र कहे जेह को तब नाहे निहार सकै वो नारी। ते अखीर दे उत्ते पंडित जी ने अपने वलों संदेश दिता, कहन लगे पिख रंचक, पिख मैंने वेख के, रंचक मैंने थोड़ी जी, पिख रंचक मैल गिलान करे सठ, सठ मैंने मूर्ख, सठ जानत नाही अहे के सारी। हे मूर्ख मनुख, जानदा नहीं है कि तेरे अंदर इस तरह की मैल ही मैल भरी पई, तेरे नौ द्वारियां विचों मैल ही बाहर आ रही है। जितने नौ द्वारियां दे नाल ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਗੜੀ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਿਰ ਭੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਮਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮੈਲ ਤਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ, ਮੈਲ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ। ਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤਨ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਰਸਤਾ ਵਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਦਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਪਾਪ। ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਕਤ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਅਵੱਛ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1: ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ

रब ना पूजन तुद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चुपड़ी कने सहन गे दुख

हरिदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जीओ। रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों तीन सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध। सबे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। गिनती विच भगत फरीद जी कुछ मिठियां चीजां नूं लै रहे ने। नंबर एक दे उत्ते शक्कर, नंबर दो दे उत्ते खंड, नंबर तीन दे उत्ते निवात। ते निवात कहिंदे ने मिसरी नूं। मैं अर्ज कीती सी कि सब तों पहला मिसरी मिश्र देश दे अंदर बननी शुरू होई। इन्हूं तां ही मिसरी कहा जांदा है क्योंकि मिश्र दे अंदर ये सब तों पहला बननी शुरू होई कुजे दी मिसरी। भगत जी कहन लगे शक्कर खंड मिश्री गुड़ माखियो। माखियो दा मतलब शहद, मांझा मझां दा दुध। कहन लगे सारियां वस्तुआं मिठियां ने पर जे रब्बी रस दे मुकाबले दे उत्ते इन्हां विचों कोई भी उदाहरण बनाईए ते ओ रब जी दी तोहीन होएगी। जे ए कहिए कि रब जी दे नाल जुड़न तो बाद जिहड़ा रस मिलदा है मिठास मिलदी है ओ शक्कर वर्गी है तां रब्बी गुणां दी रब जी दे नाम दी तोहीन है। जे कहिए ओ खंड ते मिश्री वर्गी है ते तां वी खंड ते मिश्री दी मिठास परमात्मा दी मिठास नालों बहुत थले है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। अगा कहन लगे ना उदी मिठास दे बराबर माखियो ना मझ दा दुध कुछ भी उदी उदाहरण नहीं है, वो अपनी उदाहरण केवल आप है। अगर दुनिया दे अंदर आप कोही नूर हीरे दी उदाहरण लियानी चाहो ऐस जगत दुनिया दे अंदर जिथे आपां वस रहे हां ते कोही नूर हीरे दी एग्जाम्पल दुनिया विच दूसरी नहीं है। उहदे वर्गा हीरा ही दूजा नहीं ते उहदी उदाहरण कौन कोई बने। कोही नूर अपनी उदाहरण आप है। इस तों अगे होर चलो, चंदन दा रुख दुनिया दे अंदर केवल एक ही जगह दे उत्ते पैदा हुंदा है, हिंदुस्तान दे अंदर कर्नाटका स्टेट विच। ते चंदन अपनी उदाहरण आप है, चंदन वर्गा कोई भी दूसरा वनस्पति दा बूटा नहीं है। किन्नू कहोगे कि एदी समेल, एदी सुगंध, एदी मिठास, एदी तासीर चंदन वर्गी। कोई भी बूटा उस तरह दा असरदायक नहीं जिवें चंदन दा बूटा है। चंदन अपनी उदाहरण आप है, समुंदर अपनी उदाहरण आप है। जे समुंदर दी गहराई दा जिक्र करना होवे ते की कहोगा, की कहोगे समुंदर किहदे वर्गा डूंगा। चलो जे आम गहरी खड्ड दा, गहरे तालाब दा, गहरी झील दा जिक्र करना होवे असी कह दिन्ने आ ए चीज गहरी है समुंदर वर्गी, चीज गहरी है सागर वर्गी। ते जे सागर नूं बयान करना होवे ते उदाहरण की दोगे। सागर अपनी उदाहरण आप है,
हिमालया पर्वत अपनी उदाहरण आप है, आकाश अपनी उदाहरण आप है, इहदे वर्गा कोई दूजा नहीं। परमात्मा अपनी उदाहरण आप है, परमात्मा वर्गा कोई दूजा नहीं। कित्थों उदाहरण लभ के लियाईए कि परमात्मा इन्ना उच्चा है। अगर ये कह दिए कि परमात्मा हिमालया पर्वत वर्गा उच्चा है तो फिर हिमालया पर्वत की एक सीमा है। हिमालया पर्वत ते आए दिन कोई ना कोई विज्ञानी दे कदम टिके होंदे ने हिमालया पर्वत दे उते। हिमालया पर्वत नूं कोई चल के सर कर लैंदा है तो फिर ते परमात्मा भी बहुत छोटा होया अगर एक हिमालया पर्वत वर्गा है। जे ये गल कहो कि परमात्मा सागर वांग डूंगा है तो सागर दी गहराई सीमा दे अंदर है। मैं अक्सर एक बेनती करिया करदा कि जो मापन विच जो तोलन विच ते जो गिनन विच आ रहे उन्हों बेअंत कहने दी लोड़ नहीं है। जो मापिया जा सकदा है बेअंत नहीं है। वो इस तरह नहीं कि उहदा पारावार नहीं। जो गिनिया जा सकता है वह बहुत वड्डा नहीं, गिनती दे अंदर है। जो मिनिया तोलिया जा सकता है वह भी बहुत वड्डा नहीं, मिनती दे अंदर, पैमाने दे अंदर, तोल दे अंदर है। परमात्मा ना गिनती विच है ना मिनती विच है, माप तोल विच नहीं, ते ना परमात्मा होर किसे पैमाने दे अंदर ही कैद हुंदा है। परमात्मा गिनती मिनती तोल पैमानिया तो बाहर है। तो हुण ये कहना परमात्मा समुंदर वर्गा डूंगा है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। परमात्मा पहाड़ वर्गा उच्चा है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने एक बचन जरूर फरमाया है, वो कहन लगे एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा तेरी उदाहरण नहीं है। हां कोई तेरे नाल जुड़दा जुड़दा चलदा चलदा तेरे वर्गी ऊंचाई नूं पा लवे ते कह सकने आ कि ओ तेरी रमज नूं तेरे विस्तार नूं जान पावे, पर जिन्हां ने जानिया है ओही ते कह रहे ने कि तू बेअंत है। गुरु साहिबान ही ते कह रहे ने कि तू बेअंत है, भगत जानी ते कह रहे ने कि तू बेअंत है। तो मैरिज कर रहा सां परमात्मा दे उत्ते दुनियावी कोई भी उदाहरण लागू हुंदी नहीं। परमात्मा दे बराबर किस चीज नूं खड़ी करोगे? कहोगे परमात्मा समुंदर वर्गा डूंगा है ते सब तो ज्यादा डूंगा अटलांटिक ओशन है, और वह किन्ना है 39,000 फुट डूंगा, इस तो वध डूंगा नहीं। हिंद महासागर 39,000 फुट डूंगा है, इस तो ज्यादा नहीं। तो की फिर परमात्मा 39,000 फुट दे उत्ते जाके खत्म हो जाता है? परमात्मा इत्थे मुक जाता है? उदाहरण जदों भी दित्ती जांदी है उदों उहदी दित्ती जांदी है जिहड़ा अगे खड़ा होवे। जे ते बुराई दी उदाहरण देनी है ते बुरा मनुख जिहनूं कह रहे हां उहदे नालों अगे खड़ा होवे, उदाहरण उहदी। ते जे चंगियाई दी उदाहरण देनी है ते चंगे पण दे अंदर भी जिहड़ा अगे खड़ा होवे, उदाहरण उहदी। आप अपने बच्चियां नूं जदों तालीम दी विद्या दी उदाहरण देंदे हो ते कदी इस तरह उदाहरण दिती है कि बेटा साडे पड़ोसियां दा बच्चा या साडे रिश्तेदारां विचों फलाना बच्चा लगातार एक क्लास दे अंदर 5 साल ला के तां अगे सरकिया है, तां अगे होया, 5 वार इको क्लास दे अंदर फेल होया। उहदी उदाहरण तुसीं बनाओगे? बल्कि उहदी उदाहरण बनाओगे जो 1 साल दे अंदर 2-2 क्लासां करदा रहा है, जो बड़ी जल्दी डिग्री नूं पाउण वास्ते पहुंच बना चुका है, उदाहरण ओदी बनाओगे। पढ़ाई दे अंदर उदाहरण ओदी जो चलदा चलदा बहुत जल्दी मुकाम दे उते पहुंचिया ते पूरी तरह कामयाब होया। अगर आप अपने बच्चियां नूं कारोबार दी उदाहरण दिओ, एक दुकानदार एक व्यापारी अपने बच्चियां नूं कारोबार दी उदाहरण दवे तो की कदी उहदी उदाहरण बनाईए? जिहड़ा बंदा अपनियां कमजोरियां दे कारण कारोबार विचों फेल हो चुका है उहदी उदाहरण बनाओगे? जो कारोबार नूं आरंभ करदा है 0 तो पर उह चंद ही दिनां दे अंदर कारोबार दा हीरो बन जांदा है, कारोबार दे अंदर बहुत बुलंदियां नूं छू लैंदा है, आप उदाहरण उहनूं बनाओगे। बेटा कारोबारी बनना है ते फलाने वांग चलिया सी, कोल कुछ नहीं, अज सब कुछ कोल है। पढ़ाई करनी है ते फलाने वांग, फलाना डॉक्टर बन गया,
फलाना साइंटिस्ट बन गया, ए बन गया, ओ बन गया, उदाहरण ओदी बनाओगे। ठीक इस तरह धर्म दे राह दे उत्ते मैनूं समझ नहीं आउंदी कि जदों भी किसे दे नाल धर्म दी चर्चा आरंभ करिए ना, ओ उस बंदे नूं उदाहरण बना के पेश करदा है जिहड़ा धर्म दी दुनिया दे अंदर बिलकुल नखित ते डिगा चकना चूर होया बंदा है। किसे नूं कहिए भई अमृत पान करना चाहीदा है, ओ कहिंदा है हां वेखे ने गात्रे कृपान पा के पब्बां क्लबां दे अंदर रुलदियां नूं कईआं नूं वेख्या, जो अमृत तारी बन के बुलंदी दे उत्ते पहुंच चुके ने ओदी उदाहरण नहीं बनाई। वेखण वाले ने उदाहरण किनू बनाया है? जो डिग चुका है दुनिया दे अंदर उनू उदाहरण बना रहे हैं, जो चढ़ रहा है कामयाबी दी मंजिल नू। धर्म दे अंदर आपां उस बंदे नू उदाहरण बना रहे हैं जो डिग रहा है ते डिगदा डिगदा बिलकुल चकना चूर हो गया, उदाहरण उनू बना रहे हैं। कि धर्म दे अंदर कोई भी बंदा तुहानू सक्सैस हुंदा नजर नहीं आ रहा, कामयाबी वल नू वधदा नजर नहीं आ रहा। ठीक है इस गल दे अंदर रंचक मात्र झूठ नहीं कि धर्म दी दुनिया दे अंदर पखंड हदों ज्यादा छा गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा छा गया, बाहरों कुछ होर दिसदे ने अंदरों कुछ होर हुंदे ने, पखंड जोर फड़दा जा रहा है। वो बंदे धर्म नू टाल आउंदा कम कर रहे ने, क्यों कम कर रहे ने? क्योंकि तुसी जुड़दे उहनां दे पहरावे नू, उहनां दीआं गल्लां बातां नू वेख के। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल सीधा जुड़दे ने ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਵੱਛ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੈਸਾ ਹੋਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਖਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਰਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਖੜਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਕੀ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣੇ ਅਵਤਾਰ ਵਰਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੋ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਪਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਅਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
फिर पुछया गया भाई नंद लाल साहब तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे 52 कवियां विचों सिरमौर कवि हो, पहली कतार दे अंदर बह के लिखण वाले बोलण वाले कवि हो, तुसी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे मुखड़े दे संबंध विच कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब कहिंदे ने बदरा दरपेश रुखत शर्मिंदा अस्त। बदरा बदरा मैंने चंद्रमा, कहन लगे बदरा दरपेश रुखत शर्मिंदा अस्त। लोको तुसी उदाहरण देंदे हो कि गुरु गोबिंद सिंह दा मुखड़ा इन्ना सुंदर जिवें चंद्रमा, ते मैं ये कहना कि चंद्रमा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे सामने आण के शर्मिंदा पै जांदा है। भाई नंद लाल साहब जी दी अपनी सोच, अपने विचार, अपने ख्यालां दी उच्ची परवाज। कहिंदे ने मैं ये कहना कि चंद्रमा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे मुखड़े दे सामने आण के शर्मिंदा पै जांदा है। ते हुण चंद्रमा नूं रोशनी कित्थों मिल रही है? सूरज कोलों। जिवें पाणी दा केंद्र सागर है, पाणी सरोवरां विच होवे, पाणी झीलां विच होवे, पाणी नदियां विच होवे, पाणी तालाबां विच होवे, जिथे भी पाणी है, पाणी दा मरकज, पाणी दा केंद्र केवल ते केवल समुंदर है। रोशनी जिथे भी है, चाहे वह ट्यूबा विच है, बल्बा विच है, या तारे चमक रहे ने, चंद्रमा चमक रहा है, रोशनी जिथे भी है सूरज की रोशनी है। ते अगली पंक्ति विच भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने खुर्शीद जहां हम बंदा अस। खुर्शीद फारसी विच खुर्शीद कह देंदे ने सूरज नू। पहली पंक्ति विच कहिंदे ने बदरा दरपेश रुख शर्मिंदा अस्त, चंद्रमा तेरे सामने आण के शर्मिंदा पै जांदा है। ए गुरु गोबिंद सिंह, चंद्रमा तेरे सामने आण के शर्मिंदा हो जांदा है। अगा कहिंदे ने चंद्रमा नू जिथों प्रकाश मिल रहा है सूरज, ओ जेड़ा सूरज है जहान नू प्रकाश देन वाला, खुर्शीद जहां हम बंदा अस। ऐ गुरु गोबिंद सिंह तेरा त्यो भी बंदा, बंदे दा मतलब गुलाम, तेरे स्वरूप दा ओ भी गुलाम है, तेरी सुंदरता दा ओ भी गुलाम है। तो भाई नंद लाल साहब जी नू नहीं प्रवान होया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी उदाहरण दिती जाए, ते दिती जाए चंद्रमा दे अंदर। भाई नंद लाल साहब कहिंदे ने चंद्रमा दे अंदर दाग है, पर तेरे अंदर कोई दाग ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह तू पूरा निर्मल है, तेरे अंदर कोई दाग नहीं। एक मैं होर बेनती करदा चला, क्योंकि अज दे श्लोक दे अंदर उदाहरणा ने, ते मैं ताए कुछ उदाहरणा अपने वल्लों तुहाडे चरणा विच रखण दा यतन कर रहा, क्योंकि अज दे श्लोक विच भगत जी कहिंदे ने सक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन दुध। ये सारियां चीजां अपनी जगह ते मिठियां ने, पर रब जी तेरे बराबर इन्हां विचों कोई भी नहीं है, तेरे नेड़े तेड़े कोई भी पूजन वाली नहीं है, तेरे बराबर कोई भी नहीं। तां मैं उदाहरणा दे रहा, अगर किसी दे गले दे अंदर मिठास बड़ी होवे, बोल बाणी बड़ी मिठी होवे, आप दो गल्लां कहिंदे हो इहदी आवाज है मिश्री वर्गे, इहदा मतलब मिश्री मिठी होंदी, इहदी आवाज है कोयल वर्गे, ते कोयल जदों बोलदी है उदों मन नूं खिच पाउंदी है, मोह लैंदी है। कोयल दा बोलना, कोयल दा तराने गाउणा, कोयल दी आवाज मना नूं धू पाउंदी है। पर किसी का गला खराब होवे, बोली उहदी कन्नां नूं सुखावे ना, उहदी बोली कौड़ी होवे, बोली फिक्की होवे, ते बोल होवे भी दुरुस्त ना, तुसीं उहदे बोल वास्ते कह देंदे हो इहदा बोल कां वर्गा। हुण कां ते कोयल दोवां दा रंग ढंग ते इक्को जिहा, पैरां तों सिर तक कोयल दा जामा काला है, ते पैरां तों सिर तक कां दा जामा काला है, और तकरीबन तकरीबन दोवां दी शक्लो सूरत आपस दे अंदर मेल खांदी है। कोयल ते कां तकरीबन मेल खांदे ने, आकार वजन इक्को जिहा हुंदा है तकरीबन, पर एडा वड्डा अंतर के कोयल नूं सुनना पसंद करदे हो, ते कां नूं बनेरे ते बह के बोले ते उड़ाउणा पसंद करदे हो। कुरखत बंदे नूं कह देईदा है बोली कामरगी, ते बहुत मिठास वाली बोली आप सुनो ते कह देंदे हो बोली कोयल वर्गी। उदाहरण है ना, इहदा मतलब कोयल दी बोली बहुत मिठी है, ते कां दी बोली बहुत कुरखत है, सुनन दे योग नहीं है। उदाहरण सी, तुहाडे घर दे अंदर
ਇਹਨਾਂ ਬਲਬਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਲੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਪ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਚਾਕੂ, ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਤੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸਾਹਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਹਰਾ ਗਊ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾ ਕਰਕੇ ਗਊ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਕਰਕੇ ਗਊ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ, ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਨਕੇ ਵਰਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਤੇਜ ਦੌੜੇ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਘੋੜਾ ਤੇਜ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂੰ ਦੀ ਚਾਲ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੇ ਘਰ, ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਂ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਸਵਾਮੀ ਮੈਨੇ ਮਾਲਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਲਣਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦਾ ਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਜਮਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਮਹਿਣਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 84 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
असी तोड़ने आ सज्जे खब्बे धागा तवीत टूना टंजर जां बंदियां दे उत्ते साडा भरोसा है फलाने बंदे कोलों जाके कोई जंतर मंत्र लईए फलाने कोलों पाठ पूजा करवाईए शायद मेरे जीवन विच लाभ हो जाए। असी बंदियां दे दर दे उत्ते झुकने आ स्वामी दे दर दे उत्ते झुकना सही ढंग दे अंदर सानू आया ही नहीं। मैं एक बेनती गुजारी सी कि तारे मौला पे एक ही सिजदा काफी वो भी दूर से, परमात्मा दे दर ते एक बारी सिजदा कर लो उन्ना ही बड़ा है ते भावे दूरों ही कर लो वो भी दूर से। दारे इंसान पे 100 बार दस्तक देनी पड़ती है, इंसान दा दर 100 बारी जाके खड़काओगे तरले मिनता करोगे वो तां तुहाडी गल सुनेगा ते स्वामी दा दर एक बारी आन के खड़का लो स्वामी गल सुनन लई तैयार है। पर जे तुसी सुनाउण वाले बन के आए हो तां, ते जे राजनीति चलाकी लैके आए हो फिर नहीं। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, जे चतुराई लैके आए हो फिर नहीं कि चलो चलदे चलदे निकलदे निकलदे गुरुद्वारे भी अरदास कर लेने, अगे मंदिर आएगा उत्थे भी कर लवांगे, मस्जिद आएगी उत्थे भी कर लवांगे, फिर फलाने डेरे ते जाके भी कर लवांगे, फलाने कोलो तवीज भी लै लवांगे, फलाने कोलो धागा बन के भी लैके भी डौले दे नाल बन लवांगे, फिर नहीं। पूरी ईमानदारी चाहीदी। हुण गुरु तेग बहादुर साहब उदाहरण दे रहे ने ते दे रहे ने कुत्ते दे। कुत्ता मालक दा दर नहीं छड्डदा, खिमा चाहवांगा असी छड्ड देने आ। साडे उत्ते मामूली जी मुसीबत आ जाए ना बिलकुल नाम मात्र ते असीं गुरु दे नाल मन ही मन करके लड़ना शुरू कर देने आ, पातशाह मैं सवेरे भी तेरे कोल आउणा शामी भी तेरे कोल आउणा, ये मुसीबत मेरे वास्ते ही रखी सी, ये औकड़ मेरे राह विच ही आउणी सी। असीं उसे वक्त शिकवा गिला इतराज करना शुरू कर देने आ। बंदे दे उत्ते साडा भरोसा ज्यादा है, स्वामी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उत्ते थोड़ा है। कुत्ते नूं भुखा रखे, कुत्ते नूं रजवा रखे, मालक नूं चेते विच रहे कि इहनूं रोटी दुध देना है, ते तां कुत्ता डरते रहिंदा है। किसे मजबूरी दे कारण काम काज दे कारण मालक दे ध्यान विचों गल निकल गई कि कुत्ते नूं दुध पाउणा सी नहीं पाया, ते कुत्ता डर छड्ड के किधरे जांदा नहीं। सानू दात मिल जाए ते असी स्वामी दे दरदे हां, नहीं दात मिली ते असी दूजा दर लभ लैने, ते वफादारी साडी होई के वफादारी कुत्ते दी होई। सानू दात मिलदी रहिंदी असी सिख हां, दात ना मिले ते असी दूजे दर खड़काउणे शुरू कर देने आ तुहाडे कोलों दात मिल जाए। कदी कुत्ता तुहाडे दरवाजे नूं छड्ड के दूजियां घरां दे अंदर मूंह मारी करदा है, जाके ओह इस तरह बैठदा है जिवें तुहाडे घर विच बैठदा है। कुत्ता 2 दिन का भुखा होवे तुसी कुत्ते नूं कुछ ना पाओ, जद भी बाहरों घर आओगे कुत्ता तुहाडे कदम चुमने शुरू कर देंदा है, क्योंकि तुसी स्वामी जो है ते कुत्ते नूं इस गल दी समझ है कि तुसी स्वामी हो। सानू इस गल दी समझ ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जी तूं स्वामी है। जे समझ होवे ते फिर चरण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पूजांगे, आम बंदे दे नहीं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सेवक बन के रवांगे, आम किसे मनुख दे नहीं। कुत्ते दी वफादारी दी उदाहरण है, ते कुत्ते दा एक सुभा होर है, वह भी गुरबाणी दे अंदर आया है, पर वह सुभा बुरा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिहड़ी चंगी गल है उहनूं भी सामने लियांदा है, ते जिहड़ी मंदी गल है उहनूं भी सामने लियांदा है। दूसरे पासे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कुत्ते दी उदाहरण दे रहे ने, चाकी चाटै, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा वचन, चाकी चाटै चून खाहे चाकी का चीथरा कहां ले जाए। कुत्ता लालची भी है, कुत्ता लोभी भी है, ते जद कोई बंदा बहुत ज्यादा अपने लोभ नूं वधा लवे ते उन्हों में सतगुरु कुत्ते दे नाल तुलना दे देंदे ने। कहन लगे कुत्ते दा दूजा सुभा ए है कि जे आटे वाली चक्की चलदी है कोल कोल आटा डिगा होवे, पातशाह उदाहरण दे रहे ने, ओ कुत्ता आटे नूं चट लैंदा है। जेड़ा चक्की साफ करन वाला कपड़ा चीथरा है कुत्ता उन्हों में खिची फिरदा है। चाकी चाटे चून खाहे, चक्की भी चट ली, चून भी खा लिया, चून मैंने आटा, चाकी का चीथरा कहां ले जाए, इहदे साफ करन वाले कपड़े नूं किधर खिची फिरना है। अक्सर कह देंदे ने कि कुत्ते दी हड्डी वाला स्वाद, सुक्की हड्डी नूं फड़ के कुत्ता अपने मूंह विच पा लैंदा है, उन्हों चबाउंदा है लोभ दे वस होके, ओ
ਉਹ ਹੱਡੀ ਚੁੱਭ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਦ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖੀਓ ਮਾਂਜਾ ਦੁੱਧ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਮਿਸ਼ਰੀ ਗੁੜ ਮਾਖੀਓ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰਸ ਰੱਬੀ ਰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁੱਧ। ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਵੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਹੱਸਮਈ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਨ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਅਗਰ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ ਲਾਓਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਾਵਨ, ਤੇ ਲਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਰਲ ਲਾਵਨ, ਲਾਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਾਗ ਭਾਜੀ ਲਾਜਮਾ ਜੋ ਆਪ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਵਨ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਾਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਗ ਭਾਜੀ ਲਾਜਮਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨੈ, ਅੰਨੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ, ਅੰਨ, ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੀਏ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੀਏ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਵਰਗੀ ਸਮਝੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭੋਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ
क्यों लिया? क्योंकि भगत फरीद साहब की बाणी विचों भी ओही आशा मिल रही है जो मेरे बोलां विचों सिख जगत नूं या पैरोकारां नूं मिलेगा। कबीर साहब नूं पढ़ो ते कबीर साहब का बचन भी इस तरह ही आंदा है कि रोटी छड्डना गुनाह है। कहन लगे रोटी छड्ड के वरत रखने, चलो मैं एक बेनती होर करदा ही चला। वरत अज भी डॉक्टर वैद लोग कहिंदे ने कि कदी कदी हफ्ते महीने दे अंदर एक दिन भुखा रह जाना उचित है, योग है, उहदे नाल शरीर क्रिया ठीक रहिंदी, पाचन क्रिया ठीक रहिंदी। वरत रखण दा भाव ते असीं कदी कदी अपने आप नूं भुखा रख लिया कर तां कि शरीरक प्रणाली शरीरक क्रिया ठीक ढंग दे नाल चलदी रहे। उस वरत नूं चुक के जोड़ दिता गया धर्म दे नाल। चलो जो रखदे ने उह रखण, पर सिख नूं ते पातशाह ने मना कीता है। हरका सिमरन छाड़ कै अहोई राखै नार गद ही होय कै औतरै पार सह मन चार छोड़ै अन्न करै पखंड नाओ सुहागन नाओ रंड। हुण गुरबाणी कह रही है, मैं ते नहीं कह रहा। ते जे नाराज होना है ते गुरबाणी ते होयो, मेरे ते होयो भी ना। मैं ते ज्यों दे त्यों बचन तुहाडे सामने रख रहा। छोड़ै अन्न करै पखंड, जे अन्न छड के फरीद साहब पखंडी कर रहे ने ते फिर फरीद साहब दी बाणी इस बाणी दे बराबर बहन दे योग किवें बन गए? गल कुछ होर है, असीं समझ कुछ होर लैने आ। भगत जी कहन लगे कि रोटी मेरी काट के, रुखी मिसी रोटी है मेरी काट वर्गे। मतलब मैं दूसरिआं दी चौपड़ी वेख के अपने आप नूं तरसा नहीं रहा, दूजे दा हक मार के मैं चौपड़ी खान दी लालसा रखदा नहीं कि दूजे नूं उजाड़ के दूजे दे मुंह विचों खो के ते मैं अपने मुंह विच चौपड़िया प्रशादा पावां, चंगा प्रशादा पावां। मैनूं रुखी मिसी मिल जाए मैं उसे नूं प्रवान करदा। रोटी मेरी काट के, लक्कड़ वर्गी सुकी रोटी खा के मैं खुश हां। कहन लगे लावन मेरी भुख, उहदे नाल लाजमा नाम ही होवे, लावन नाम ही होवे, मैं भुख नूं ही लावन दी जगह दे उत्ते वरत लैना, भुख नूं ही लाजमी दी जगह दे उत्ते वरत लैना। एक बेनती मैं होर करदा चला। एक बंदे दा पेट भरिया है ते भरिया भी गले तक है, भोजन खाधा है ते खाधा है, उहने पेट भर के रज के खाधा, उहदे सामने चंगे तो चंगा भोजन परोस के थाल दे अंदर तुसीं रखदे हो, उस भोजन नूं वेख के रजे पेट वाला छत्ती सवाल करेगा, इहदे अंदर नमक घट है, इहदे अंदर मिर्च ज्यादा है, इह प्रशादा ठीक नहीं, दही ठीक नहीं, सलाह ठीक नहीं, उहदे तरह तरह के सवाल पैदा होणगे। कारण अंदर भुख नहीं है। एक बंदे नूं 10 दिन तो प्रशादा नसीब होया ही नहीं, रोटी मिली नहीं, ते 10वें दिन रुखा मिस्सा प्रशादा जाके उहदियां हत्थां ते रख दिओ, ओ रुखा मिसा भोजन खा के जो रस पैदा कर लेंदा है, ओ रजे मनुख नूं 36 तरह दा भोजन खा के रस नहीं मिलदा। क्यों? क्योंकि ओदे अंदर भुख बड़ी है ते ओदे अंदर प्रशादे दी भुख नहीं है, ओ रजिया बड़ा है। एक बंदे दे घर दे अंदर 5 पुत्रां ने जन्म लिया है, 6वें पुत्र ने फिर जन्म लिया, ते 6वें पुत्र दे जन्म दे नाल उहनूं कोई बहुत वड्डी खुशी नहीं मिली। पुत्र पुत्र है, पर 6वां पुत्र पैदा हुंदा है ते बहुत वड्डी खुशी मन विच पैदा नहीं होई। क्यों नहीं होई? क्योंकि पुत्र दी औलाद दी भुख नहीं है। एक दे घर दे अंदर पुत्र है ही नहीं, उन्हें पता नहीं किन्ने पाठ कीते ने, किन्नी वार नमस्कारां कीतियां ने, केड़े खुई जाल पाए ने, किथे किथे नक गोडा रगड़िया है। अद्धी उम्र बीत जाण तों बाद किधरे एक बच्ची जां बच्चे दा जन्म होया है, ते एक पुत्र दा जन्म जां पुत्री दा जन्म पा के जो औलाद दे भुखे बंदे नूं रस मिलदा है, ओह औलाद वल्लों रजे बंदे नूं रस नहीं मिलदा। एक बंदा है तन करके नंगा, उहनूं आप बिल्कुल हकीकत विच नंगा होवे, मतलब मुफलस होवे, गरीब होवे, उहनूं आप सादा मुरादा खद्दर दा कपड़ा जाके पेट करो, लै भी अपने तन दे उत्ते हंडा नंगेज टक, गर्मी सर्दी तों बचा कर, ओ खद्दर दी पोशाक विचों जो रस लै लेगा। एक बंदे दियां घर दे अंदर अलमारियां रेशम दे नाल भरियां पईआं ने, उहनूं ओ रस रेशम पा के नहीं मिलदा। जो गरीब नूं खद्दर विचों रस मिलदा है, अमीर नूं रेशम पा के नहीं मिलदा। क्यों नहीं मिलदा? क्योंकि उधर कपड़े दी भुख कोई नहीं है, इधर कपड़े दी भुख बड़ी है।
गल मैं भुख दी कर रहा सी, इधर भुख बड़ी है उधर भुख कोई नहीं। एक बंदे ने पानी पी पी के अपने आप नू भरिया पिया है, उन्हू शरबत पीन वास्ते कोक जूस पीन वास्ते पेट करो, वो नहीं पिएगा। एक दो कुट्टा पी के छड़ देगा, आप जिद करोगे नहीं पिएगा, क्योंकि अंदर भुख नहीं है, मंग नहीं है। एक बंदे नू तीन दिन तो पानी दी कुट नसीब हुई नहीं, ते उन्हू आप जाके पानी दियो, वो कोई सवाल नहीं करेगा पानी खूह दा है, पानी नलके दा है, पानी तालाब दा है, पानी नदी दा है, पानी फिल्टर होया है नहीं होया, पानी नू किदे किदे हाथ लगे ने कोई सवाल नहीं करेगा, पानी झूठा है पानी सुचा है कोई प्रश्न नहीं करेगा। शर्त ए है कि पानी दी मंग ओदे अंदर होए, पानी दी प्यासा ओदे अंदर होए। जद बंदा अंदरों भुखा हुंदा है उन्हों दात विच्चों रस मिलता है, ते जद अंदर रज्या हुंदा है दात विच्चों रस नहीं मिलता। हुण मैं इहदी एक उदाहरण तुहाडे सामने होर अर्ज करदा चलां। तुसी सारा दिन कम कर करके मेहनत कर करके थक चुके हो और पेट दे अंदर भुख भी बड़ी, पंजाबी विच कहिंदे ने चूहे कुद रहे ने, पेट दे अंदर भुख भी बड़ी। आप प्रशादा छकण वास्ते बैठ जाओ, भोजन दी पहली बुरकी विचों जो तुहानू स्वाद मिलेगा, भोजन ओही तुहाडे थाल दे अंदर है, पर सहजे सहजे पेट दे अंदर भोजन जांदा रहा, पेट भरदा रहा, जद भोजन दे अखीरले टुकड़े नू मूंह विच पाओगे ते ओ रस नहीं मिलेगा जो पहले टुकड़े विचों मिलिया सी। कारण की है, जद पहला टुकड़ा मुख विच पाया सी अंदर भुख बड़ी सी, जद अखीरला टुकड़ा मुख विच पाया ते अंदर दी भुख शांत हो गई है, अंदर दी भुख मर गई है, अंदर दी भुख मिट गई है। ते फिर मैं नाल लगदी एक बेनती होर करदा ही चला, इस तरह दे विचार चल रहे ने, परमात्मा दे संबंध विच अंदर प्यास पैदा करो, अंदर भुख पैदा करो। अंदर भुख ते प्यास पैदा कर लो, जुबान विचों वाहिगुरु कह लो, वह भी तुहानू जोड़ देगा, मूल मंत्र कह लो वह भी जोड़ देगा, गुरबाणी का कोई शब्द कह लो वह जोड़ देगा, ना भी कहो वैसे चेते विच परमात्मा आ जाए ते आप जुड़ जाओगे। अगर अंदर भुख नहीं अंदर प्यास नहीं, तीन तीन घंटे बह के जो मर्जी जपी जाओ करी जाओ कुछ नहीं बनेगा। खिमा चाहवांगा बोल समझने कुछ औखे ने, पर समझन दा यतन करियो। बहुत ज्यादा जपिया भुख प्यास श्रद्धा विश्वास भरोसे तो बगैर लाभकारी घट हुंदा है। भरोसा विश्वास बना के भुख नूं जन्म दे के एक बारी जुबान चो वाहिगुरु कह लो, शुकराने दे नाल अपने आप नूं भर के, ते एक बार दा बोलिया होया वाहिगुरु, इस तरह होएगा जिवें तुहाडे अंदर रस दी घुट लै के चला गया। एक बार दा बोलिया होया वाहिगुरु। तो फरीद साहब कहिंदे ने, लावन मेरी भुख, मेरे अंदर भुख बड़ी है। और भुख किस गल दी? परमात्मा दे मलाप दी भुख है। कहन लगे, मैं लोकां दे कारोबार नूं वेख के अपने अंदर जैलसी पैदा नहीं करदा, मैं लोकां दी चौपड़ी रोटी वेख के अपने मन नूं तरसाउंदा नहीं। जो मेरी झोली विच सतगुरु दे रहे ने, मैं उन्हूं पा के देण वाले दा सत शुकर करदा, उदा मैं शुकराना करदा। मैं ए अफसोस नहीं करदा कि मेरी झोली दे अंदर रुखा मिस्सा क्यों ते दूजे दी झोली दे अंदर बहुता ते चंगा ताजा क्यों, मैं शिकवा नहीं करदा। कहन लगे, लावन मेरी भुख ही सब्जी बन जांदी है, रुखा मिस्सा प्रशादा होवे ओ मैं छक लेना। भगत फरीद साहब ग्रिस्ती ने, भगत फरीद साहब जी दे छे बच्चे ने, जिन्हां विचों चार लड़के ने दो लड़कियां ने, ते भगत फरीद साहब जी नूं पता है कि ग्रिस्त दी जिम्मेवारी की है ते इनू नभाउणा किवें है। ओ अपने घर बार नूं या ग्रिस्त नूं माड़ा कह के जंगलां बेलियां दे अंदर कायर बन के दौड़न वालियां विचों नहीं सन, कि चलो घर दे बच्चियां नूं भुखे ते रोंदे विलकदे छड दिओ ते बाहर जाके आप हलवे मंडे दे नाल अपना पेट भर के सौं जाओ। भगत फरीद साहब आम नहीं है, भगत फरीद साहब रब जी दे अंदर अपेद होए पुरश ने। जो अपेद होया मुकम्मल नहीं, ओदी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर जगह मिली नहीं। भगत फरीद साहब जी नूं पता है दुनियावी फर्जां नूं किवें नभाउणा है और धार्मिक राह दे उत्ते ग्रिस्त मार्ग विच रहिंदिआं रहिंदिआं किवें चलणा है। इस तरह कह लो, भगत फरीद साहब राजा भी ने, जोगी भी ने। भगत फरीद साहब त्यागी ने, पर मन दे त्यागी ने,
बार दे त्यागी नहीं है, बारो उन्हां दे कोल पत्नी है, छे बच्चे ने, माया धारी ने, बार दे त्यागी नहीं है, ते गुरबाणी बार दे त्यागी बनाउंदी भी नहीं है। गुरबाणी नूं कोई इतराज नहीं कि तुसी सीस महिला विच क्यों रहिंदे हो, गुरबाणी नूं कोई इतराज नहीं कि तुसी पुत्र पत्नी तियां दे अंदर क्यों रहिंदे हो। अंदरों त्यागी बनना है, गुरबाणी अंदरों कुछ छडाउणा चाहुंदी है, ते अंदर गुण वसाउणा चाहुंदी है, बार दे त्यागी गुरबाणी बनाउंदी भी नहीं है। बारों घर बार नूं छड्ड देना ते घर दी जगह दे उत्ते जाके आश्रम बनाउणे शुरू करदे ने, बारों तियां पुत्रां नूं छड्डना ते तियां पुत्रां दी जगह दे उत्ते जाके चेले चपटे पालने शुरू करदे ने, गुरबाणी ये फैसला सुनाउंदी नहीं है। तो फरीद साहब कह रहे ने लावण मेरी भुख, हुण अगां कह रहे ने जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहणगे दुख, जिन्ना ने लोकां नूं लुट लुट के पराया हक मार मार के चोपड़ी खादी, चंगा चोखा खादा है। भगत जी कहन लगे चार दिन उन्होंने जिंदगी दे पराया हक मार के चंगा हंडाया, चंगा पाया, चंगा खादा, पर कहणगे ओही दुख दा बायस बन गया, कारण भी दुख दा ओही बने। पराया हक खाना कहन लगे दुख दा कारण बन गया, घने सहणगे दुख। और पहले सलोक नूं अगले सलोक दे अंदर भगत फरीद साहब फेर खोल रहे ने, अगर गुरबाणी नूं ध्यान दे के सुनो पढ़ो ना ते गुरबाणी अपने अर्थ आपे ही कर देंदी है। अगले सलोक विच भगत फरीद साहब अपने अंदर दे हाव भाव नूं खुल्लिया बोलां विच पेश करदे ने, कहिंदे ने रुखी सुखी खाए के, हुण लगणगे ना तुहानूं दोवें सलोक विरोधी। पहले विच कह रहे ने रोटी मेरी काटकी, ते जे काटकी है आप काटकी खांदे ने ते सानूं रुखी सुखी खाण वास्ते उपदेश क्यों कर रहे, सानू भी काट दी खाण वास्ते उपदेश करन। गुरु साहिबाना

रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो फरीदा देख पराई परायां दी चोपड़ी वेख के चंगी वेख के चंगा कारोबार वेख के चंगा भोजन कपड़ा वेख के ना तरसाए जियो। कहन लगे अपने आप नू तरसा ना। फिर बेनती करा गुरबाणी दे अखरी अर्थ उपरों उपरों लो ते मन विच बड़ी वार दुबदा बन जाएगी। थोड़ा जिहा गहराई विच जा के गुरबाणी दे रतन लभन दा यतन करो। मैं इंग्लैंड सी, मेरे उत्ते दो चंगे वेल एजुकेटेड मनुखा ने प्रश्न किया, पढ़े लिखे सजना ने प्रश्न किया, ज्ञानी जी तुसी बाहां खड़ियां कर करके स्टेज दे उत्ते बहुत वार कहिंदे हो गुरबाणी झूठी नहीं, गुरबाणी सच्ची है, गुरबाणी दा अखर अखर सच है, पर अज दे विज्ञान ने बाणी नूं झूठी साबित कर दिता। मैं क्या भी केड़ा बचन गुरबाणी दा तुहानूं इस तरह लगा है कि जो साइंटिफिक ढंग दे नाल सही ना होवे, विज्ञानिक ढंग दे नाल ओ खरा ना होवे ते तुहानूं ओहदे विच झूठ दिसदा होवे। केड़ा बोल इस तरह दा? उन्हां ने दो पंक्तियां बोलियां। कहल के गुरबाणी कहिंदी है नरू मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काल सवारे। भी पशु मरदा है ते बड़े कमां नूं सवारदा है, ते नरू मरदा है मनुख मरदा है ते किसे काम नहीं आउंदा। कहन लगे गल गुरबाणी विच आउंदी है ना? मैं कहा जी जरूर आउंदी है। कहन लगे फिर अज अगर मरन तो पहला मनुख लिखती रूप विच ये गल कह जावे कि मेरियां अखां कढ के दान कीतियां जान ते अखां काम आ जांदियां ने, चार घंटे दे अंदर अंदर अखां कढ लियां जान ते उह वरतों विच आ जांदियां ने, फिर गुरबाणी झूठी हो गई ना। जद बंदे दे अंग कढ के वरतों विच आ सकदे ने, किडनी वरतों विच, अख वरतों विच, ते गुरबाणी कहिंदी नरू मरे नर काम ना वे। हुण उपरों उपरों वखरी अर्थ लोगे ते ही बणनगे, पर भुलेखा खा जाओगे। पर जद जाओगे गहराई विच ते गुरबाणी दी सूझ पैगी गुरबाणी कहिंदी की है। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा, नरू मरे बंदे दे अंदरों जद बंदा पन मरदा है, इंसान दे अंदरों जद इंसानियत मरदी है, एक किसे काम दा नहीं है। नरू मरे नर काम ना आवे। ते फिर गुरबाणी गुरबाणी नूं खोल दी, उधर गुरु अर्जन देव साहब जी कह रहे ने करतूत पशु की मानस जात, ओ पशु वाली करतूत तेरे अंदरों मर जाए। तू बंदे दी जात विच है, बंदा बन, बंदे बंदगी इख्तियार, तेरे अंदरों पशु पुना मर जावे। नरू मरे तेरे अंदरों मनुखता मरदी है, तू किसे काम दा नहीं। पशु मरे तेरे अंदरों पशु सुभाव पशु बिरति मरदी है, ते तां तू किसे काम दा है उस तरह नहीं। मैनू एक अदीब दा बोल चेते विच आउंदा है, ओ कहिंदा है रोशनी इंसान की गुम हो गई कहां, शाये आदमी के है मगर आदमी कहां। कहिंदा है आदमी विचों आदमीयत मरी हुई नजर पै रही, इंसान विचों इंसानियत मरी नजर पै रही, शाये आदमी के है मगर आदमी कहां। ते गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे ने करतूत पशु की, तेरा कर्म तेरी करतूत तेरा सुभाव पशु वाला है, मानस जात जात तेरी मनुख वाली है, इनू छड़ेंगा ते गल बनेगी वरना नहीं। पशु पुणे नू पशु सुभा नू पशु बिरति नू अंदरों मारना है धर्म दे राह दे उत्ते, तां चल पाओगे वरना नहीं। तो अपने विषय नाल जुड़ो। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कि दूसरे दा चंगा कारोबार वेख के भोजन मकान कपड़ा कार अडंबर वेख के अपने मन नू ना ते ईर शालू बना ते ना अपने मन नू तरसा के मेरे कोल नहीं है। तू कर्म करना है, कर्म करना तेरा फर्ज है, तेरे कर्म नू वेख के निरंकार तेरी झोली दे अंदर दान कदों बख्शदे ने, ये निरंकार दी मर्जी, अज बख्शन कल बख्शन। मैं एक उदाहरण कह के खिमा दा जाचक होवां, भोजन खाना साडे वस विच है, खाते हुए भोजन दा खून साडे शरीर नू किन्ना चाहिदा है, एक कतरा चाहिदा है, दो कतरे चाहिदे ने, उहदा भोजन दा खून बनाउणा ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਬਣੇ, ਚਾਰ ਛਕੋ ਦਸ ਛਕੋ ਅੱਠ ਛਕੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਨਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

0: परमात्मा दे राह दे उत्ते चलना, चंगे कर्म करने, उदा चिंतन करना, उदा जाप करना, इह साडे वस विच है। ओ त्रुट के ओ रस कदों बनाउंदा है, मन कदों टकाउंदा है, इह ओदी खेड है, ओदे वस विच है। आपां अपना कर्म करदे चलीए, ओदी गल ओदे उत्ते रहिंदी है। ओ कदों साडे ते मेहरबान होएगा, कदों मन दौड़दा होया टिक जाएगा, इह परमात्मा दी रहमत दे नाल होएगा। तो भगत फरीद साहब जी दे इन्हां श्लोकां नूं आधार बना के जो मैं आप संगत दे सन्मुख बेनतियां कर रहा सां, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कृपा करन, सब दे मनां दे अंदर गुरमत ज्ञान दी रोशनी बख्शन।
1: अज ना सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जा, जाए पुछों डोहागनी तुम क्यों रहन बेहा।

निर्वतड़ी ना पुछई तन सुहागन नाओ। सवरे पेय कंत की कंत अगम अथा नानक सो सुहागनी जो पावे।

फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाए फरीदा कित्ती जो बन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख ब्रह विशावन लेप एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख।

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो। सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनिया पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोका विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचेंदा, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज संवार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के स्नान पान करके शिंगार हार करके सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौ गई। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीते। हार शिंगार स्नान पान करन तो बाद फ्रीज जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत, चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौ गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी, हिंगदी बदबू बड़ी है ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंगदी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। अखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही, रही कथूरी गंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस श्लोक नू खोलन दा यतन करदा चला। बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लेंदा है पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेश भूषा पहरावे तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ए महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जांदी है तन करके, मन करके प्रवेश नहीं करदे। किसे दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन तारियां वाला तिलक ओहदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओहदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि ए हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलूक मन विच नहीं गया ते फिर ओह सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे भावे कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रखदा होवे, मोढे दे उत्ते मुसल्ला रखदा होवे, सूफ गल होवे, भावे उहदा लिबास काला होवे। सूफी संत अक्सर लिबास काला पाउंदे सन, मोढे दे उत्ते मुसल्ला। मुसल्ला कहिंदे ने जिहड़े कपड़े नूं विछा के नमाज पढ़ी जानी है। मोढे ते मुसल्ला होवे, सुन्नत होवे, मुच्छां कटियां होण, बारों नजर पेगा मुसलमान है ते पक्का मुसलमान है, कट्टड़ मुसलमान है। पर जे कुरान दी एक भी आयत उहदे मन विच नहीं वसी ते उस कुरान दी आयत दे मुताबक वह अपने जीवन नू गुजार नहीं रहा ते कदा मुसलमान है। भावे सिर दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू रखिया होवे, हाथ विच गुटका होवे और वेश भूषा चोला लम्मा होवे, गिट्टियां तक चार माला सुटियां होण, दाड़ा प्रकाश होवे, पग दा रंग चंगा होवे, पोच के बीबी पग बद्धी होवे, वेखण नूं ते नजर आएगा बे सिख है ते सिख भी खास है, सिख है ते सिख भी कट्टड़ है।
पर जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा एक भी बचन उन्हें मन विच वसाया नहीं ते उन्हां बचना दे अनुसार वो जीवन दे अंदर चल नहीं रहा ते फिर कादा सिख है, फिर ते बगले वाला लिबास से फिर कादा सिख है। तो मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि गीता दी जगदी हुई रोशनी मंदिर दी चार दवारी दे अंदर कैद होके रह गई है। हिंदुआं दे जीवन दे अंदर गीता दे सलोक नहीं आए, जे आए ने ते बड़े थोड़े हिंदुआं दी जीवनी दे अंदर। कुरान दे पवित्र ग्रंथ दियां आयतां, कुरान दी जगदी हुई शमा, कुरान दी रोशनी मस्जिद दी चार दवारी दे अंदर बंद है। मुसलमाना दे जीवन विचों कुरान नजर नहीं आउंदे, अगर आउंदी है ते ओ मुसलमान उंगलियां दे उत्ते गिने जा सकदे ने, बड़े थोड़े। खिमा मंग लवां, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा महान ज्ञान प्रकाश ते ए जगदी हुई सच्चाई दी शमा गुरुद्वारे दी चार दवारे दे अंदर बंद है। साडे जीवन विचों बाणी दा कोई बचन नजर नहीं आउंदा, और मेरा बोल शायद तुहाडे मन नूं चोट करदा होवे, हकीकत है। दुकान ते बह के यही चेहरा कोई होर रूप बटा लैंदा है, गुरुद्वारे दे अंदर यही चेहरा होर हुंदा है। धर्म यह नहीं है कि चलो गुरुद्वारे जाना है, बह के दो घड़ियां सुनना है, जां सुनाउणा है, मत्था टेकना है, ते हाथ विच दात्री फड़ के रखनी है, जिहड़ा दुकान ते आ गया रगड़ के धर देना है, छिल ला लैनी है, या कारोबार दे अंदर दूसरे दा हक खाना है, वधीकी करनी है, नफरत करनी है, ईर्ष्या करनी है, सारा दिन चुगली, सारा दिन निंदा। अगर ये सब बुराइयां मन दे अंदर मौजूद ने ते फिर सिख तां हां, पर विखावे दे सिखां हकीकत विच सिख नहीं है। सिखी केवल बारले पहरावे दा नां नहीं, और ये बेनती मैं अक्सर करदा ही रहना। क्यों करदा रहना? क्योंकि साडा ध्यान बाहर जुड़दा है, पहरावे दे उत्ते जुड़दा है, अंदर नहीं जांदा है। गुरबाणी दे नेम, गुरबाणी दे नुक्ते, गुरबाणी दे सिद्धांत अपने मन विच वसाओ, ते कारोबार करदिआं वक्त, वेखदे वक्त, बोलदे वक्त, सोचदे वक्त, चलदे वक्त तुहानूं गुरबाणी दे ओ बचन चोट करदे रहन कि तू इस मार्ग ते चलना है, इस मार्ग दे उत्ते नहीं चलना। अगर ते आप बाणी दे अनुसार चल रहे हो, कह सकने आ सच्चे सिख हो। खिमा चाहवांगा नहीं चल रहे ते फिर पेखी सिख हो, केवल पेख करके। पहरावे तो नजर आ रहे सिख हो, पर अंदरों सिख नहीं हो, उहदे विच मैं भी आप भी शामिल हां, तुसी भी शामिल हो। तो खैर, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने एक सुहागण ने इशनान पान कर लिया है, हार शिंगार कर लिया है, पर पति दे नाल सुला सफाई नहीं है, पति दे नाल मन मुटाव है, ते फिर वह सुहागण कादी होई। कहना की चाहुंदे ने कि धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदियां चलदियां बंदा धर्म दे अडंबर बारों बारों कर लैंदा है, पर पति परमात्मा दे नाल सुला सफाई नहीं, लैन देन नहीं, बैन उठन नहीं, पति दे विचारां दे नाल सहमति नहीं। ते भगत जी कहन लगे फिर अपने आप सुहागण है, अपने आप दे अंदर सिख है, हकीकत विच नहीं है। हुण मैं एक होर बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चलां। एक पासे एक पागल मनुख, दूसरे पासे एक रब दा प्यारा भगत मनुख, इन्हां दोवां दे मन दे अंदर जप चलदा है, दोवां दे मन दे अंदर। जो आम अकल दे तल नूं छड के, अकल दे तल नालों थोड़ा उच्चा उठ के जीवन गुजार रहा है, रब दा सच्चा संत, सच्चा भगत, कबीर साहब, नामदेव साहब ते रविदास साहब वर्गा, उन्हां दे मन विच भी जप चलदा है। दूसरा जो अकल नूं छड के, आम दुनियावी तल नूं छड के थोड़ा नीवा जाके नीवी पद्धर दे उत्ते जीवन गुजार रहा है, जिन्हों आपां कह दिंदे आ पागल, पागल दे अंदर भी एक जप चलदा हुंदा है और लगातार चलदा है। लगातार जप चलदा है जां पागल दे अंदर, लगातार जप चलदा है जां एक सच्चे भगत दे अंदर, विचकारले मनुखां दे मन दे अंदर लगातार नहीं चलदा। तुसी अपने वाल छाती मार के वेख लो, कदी तुहाडे मन दे अंदर परमात्मा दी याद हुंदी है, कदी नहीं हुंदी। कदी तुहाडे मन दे अंदर पुन चलदा है, कदी पाप चलदा है। कदी मन दे अंदर ईर्ष्या दुश्मनी चलदी है, ते कदी कदी चंगे गुणां दी माला चलदी है, परोपकार दी।
विचार चलते ने, कदी शुभ विचार चलते ने, कदी मैले विचार चलते, टिकाऊ विचार साडे विच नहीं चलते, कदी चंगे कदी मंदे, कदी बड़े उतली बुलंदी वाले, कदी बिलकुल डूंगी खड वाले, इस तरह के विचार। रब दे प्यारे दे मन विच जप चलदा है पर एक तरफा चलदा है, एक पागल दे मन विच भी जप चलदा है पर एक तरफा चलदा है। रब दे प्यारे दे मन विच जिहड़ा जप चलदा है वह लगातार परमात्मा दा चलदा है, और वह जप उहदी मंग है, वह जप उहदा शौक है, उहदी मजबूरी नहीं है। एक पागल जिहदा दिमागी तवाजन कायम नहीं रहा उहदे मन विच भी जप चलदा है पर वह बड़ी नीवी पत्र का जप चलता है, या पत्नी का जप चलता है, या पुत्रां का जप चलता है, या पदार्थ का जप चलता है। पागल बंदा क्यों होया है, किस कारण करके चोट खा के होया है, जिथों उन्हों चोट मिली पागल दे दिमाग की सूई उत्थे ही रुक जाती है, पागल उही जप वार वार करता है। और ये कारण कदी किसी पागल नूं वेखो, जिस कारण करके उन्हों चोट लगी है समाज दे अंदर चलदियां चलदियां, जिस पास्यों उन्हों चोट मिली है, पागल हो गया है, अकल गवा बैठा है, पर हुण भी मन दे अंदर वो कुछ चलता है, जुबान दे उत्ते भी उही कुछ चलता है। और इस तरह के बंदे अक्सर मिलते ने, एक तरफा गल करते हुए मिलते ने। पागल का जप उहदा बोझ है, ते एक गुरमुख का जप उहदे बोझ नूं हल्किआं करदा है, संत का जप उहदे बोझ नूं हल्किआं करदा है। पागल का जप उहदी मजबूरी है, ते एक सच्चे संत का जप उहदी मजबूरी नहीं, उहदी मंग है, उहदा शौक है। पागल का जप उहनूं जन्म मरण दे गेड़ विच लियाएगा, ते सच्चे रब दे प्यारे का जप उहनूं जन्म मरण तों रहित करेगा, जन्म मरण तों बचा देगा। इस अज दे महावाक विच भगत फरीद जी कहन लगे, धार्मिक अडंबर तू कर लैना है पर तेरे अंदर जप नहीं चलदा परमात्मा दा, तेरे अंदर चिंतन याद नहीं चलदी, ते ओ वी परमात्मा दी याद, परमात्मा दी याद नहीं, ते बारो भेख बना लिया है। कहन लगे तू सच्चा नहीं है, भेखी है, केवल भेखी है। तो हुण मैं एक बेनती होर भी करदा चला, क्योंकि अहम जिहा विशा है। अक्सर देश विदेश दे अंदर विचरदियां प्रेमियां वल्लों प्रश्न आउंदे ने, सिमरन करना है पर किवें करना है, और सिमरन करन दियां विधियां भी तरह तरह दियां बयान कीतियां जा रही ने। एक बेनती मैं होर करनी चाहवांगा, मैनू कोई हक नहीं कि मैं अपने वल्लों तुहाडी झोली दे अंदर कोई विधि विधान पावां, विधि गुरबाणी विच होवे ना, ते मैं तुहानू अपने वल्लों कोई जुगत बयान करां जी इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, मैनू कोई हक नहीं। हां, गुरबाणी विच कोई विधि बयान कीती होवे, गुरबाणी दे बचना नू खुलना, गुरबाणी दे बचना नू एक्सप्लेन करना, वह ते साडी जिम्मेवारी है, पर गुरबाणी की उलंघना करके अपने कोलों विधियां बयान करनिया जी, इस तरह कर लो ध्यान जुड़ जाएगा, इस तरह कर लो ध्यान नहीं जुड़ेगा, ये गुरबाणी दी उलंघना, गुरबाणी दी तोहीन करनी, ते अपने आप नूं वड्डा साबित करन वाला काम है। हुण जो मैनू समझ विच आया है, परमात्मा दा सिमरन करन दी विधि की, पहला सिमरन नूं थोड़ा समझ लईए। संस्कृत भाषा दा लफज है सिमरन, पंजाबी विच उहनूं कह देंदे ने चेता करना, और हिंदी विच कह देंदे ने याद करना। एक ही क्रिया दे तीन नाम ने, तीन भाषावां दे अंदर, हिंदी विच याद, पंजाबी विच चेता, ते संस्कृत दे अंदर सिमरन। जिवें पानी, कोई पानी नूं पानी कह देंदा है, कोई पानी नूं जल कह देंदा है, कोई पानी नूं नीर कह देंदा है, कोई पानी नूं वाटर कह देंदा है, कोई पानी नूं आब कह देंदा है, कोई पानी नूं जल कह देंदा है। आखिरकार चीज तो एक ही है ना, उहदे नां बड़े ने, चीज तो एक ही है, पदार्थ एक ही है, क्रिया एक ही है, कर्म एक ही है, उहदे नां तिन ने, याद करना, चेता करना, सिमरन करना। इन्हां तिन्नां विचों जो सब तो मशहूर लफज होया वह है सिमरन। सिमरन तुहाडे मन दे नाल संबंध रखता है। मैं फिर याद करा रहा, याद करना, ते हुण इस वक्त बह के तुसी अपने मन दे अंदर किन्नू याद कर रहे हो, किसे दूसरे नूं पता लग रहा कि तुहाडे मन दे अंदर याद दी माला चल रही है। तुसी इंडिया दे अंदर अपने किसे सज्जन मित्र नूं याद कर रहे हो,

जप आद सच जोगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अतः संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारावारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया